शुभ प्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय सुबह के 58 मिनट हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। FM शिमला पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर 2 गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय

जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार की हर परिस्थिति को जीत लेता है, और वो ही भगवान के चरणों में स्थान पा लेता है।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि का। सुनते रहिए।

आप सभी श्रोताओं का दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, प्रभु कृपा सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

काक भुशुंडी को अखंड भक्ति का वरदान देकर भगवान राम उन्हें अपनी माया से उत्पन्न जगत का रहस्य बताते हुए निज सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, एक ही पिता के अनेक पुत्र अलग अलग स्वभाव और चारित्रिक विशेषताएं लिए होते हैं। कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई वीर योद्धा।

तो कोई दानी होता है। पिता का प्रेम उन सबको समान रूप में प्राप्त होता है। निरा मूर्ख पुत्र भी पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय होता है। उसी प्रकार मेरा सेवक मुझे प्रिय होता है। अतः सब कुछ त्याग कर हे काकभुशुंडी, तू मेरा भजन कर। इस भांति तुम्हारी गति कालातीत होगी, समय का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु से अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त कर उनके श्रीमुख से निज सिद्धांत की व्याख्या सुनकर काकभुशुंडी का तन मन पुलकित हो गया।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान, गायक स्वर लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लीजिए अब खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी व दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,687 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन प्रभावित बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना करना है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन में यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल द्वारा आयोजित तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का कल शुभारंभ किया। ये अभियान प्रदेश में सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त व स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। राज्यपाल ने संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए युवाओं में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। नगर निगम चुनाव प्रभारी व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की उपस्थिति में पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 7 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पार्नी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता

0: सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।

भगवान श्री राम को पृथ्वी पर राज्य करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। उनका राज्य एक आदर्श राज्य था। एक दिन भगवान विष्णु की आज्ञा से धर्मराज मुनिवेश धारण करके श्री राम से मिलने आए। श्री राम उन्हें आदरपूर्वक अपने महल में ले आए। तब धर्मराज श्री राम को अपना वास्तविक परिचय देते हुए बोले, भगवान विष्णु ने आपके लिए एक गुप्त संदेश भेजा है। मैं ये संदेश आपको एकांत में देना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे कोई तीसरा उसे ना सुन सके। श्री राम ने उसी समय लक्ष्मण को बुलाया और आदेश दिया, तुम सावधानी पूर्वक यहां द्वार पर खड़े रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। जो भी हमारी बातें सुनेगा अथवा हमें देखेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण चुपचाप आकर द्वार पर खड़े हो गए। श्री राम ने अपने कक्ष का द्वार बंद कर लिया और धर्मराज से विष्णु का संदेश सुनाने को कहा। धर्मराज बोले, भगवान जिस उद्देश्य के लिए आपने अवतार ग्रहण किया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए प्रकृति के नियम का पालन करने के लिए आप पृथ्वी को त्याग कर अपने लोक को पधारे। श्री राम बोले, धर्मराज मैं स्वयं भी पृथ्वी को त्यागने का विचार कर रहा था, शीघ्र ही मैं परलोक गमन करूंगा।

धर्मराज और श्री राम में अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि द्वार पर दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। लक्ष्मण ने विनीत स्वर में उन्हें कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के लिए कहा। दुर्वासा मुनि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उसी समय राम से मिलने का हठ कर लिया। लक्ष्मण अपने कर्तव्य को भली भांति जानते थे। उन्होंने दुर्वासा मुनि को पुनः समझाया। इस बार दुर्वासा मुनि और अधिक क्रोधित होकर बोले, लक्ष्मण, तुमने मेरी इच्छा को तुच्छ समझकर मेरा अपमान किया है। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं अयोध्या को भस्म कर दूंगा। इतना कहकर वे स्वयं द्वार खोलकर कक्ष में जा पहुंचे। दुर्वासा मुनि को अपने कक्ष में देखकर श्रीराम को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा मुनि ने 1000 वर्षों का उपवास किया था। आज उस उपवास की समाप्ति का दिन था। अतः श्री राम ने मुनिवर को भोजन करवाया और विनती की कि उनके और धर्मराज के बीच की गुप्त वार्ता किसी को न बताएं। दुर्वासा मुनि बड़े गंभीर होकर महल से चले गए। उनके जाने के बाद लक्ष्मण श्री राम के पास आए और बोले, हे नाथ, आप मेरे लिए शोक ग्रसित ना हो, मुझे उचित दंड देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा को पूर्ण करने में विफल हुए थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर गए। उन्होंने हाथ में जल लेकर आचमन किया और संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राण त्याग दिए। उसी समय देवराज इंद्र अपना विमान लेकर पृथ्वी पर उतरे और लक्ष्मण को उसमें बिठाकर स्वर्ग ले गए। इस प्रकार सर्वप्रथम लक्ष्मण पृथ्वी को त्याग कर स्वर्ग गए। श्री राम को अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को प्राण दंड देना चाहिए था, परंतु हनुमान के ये कहने पर उन्होंने लक्ष्मण का त्याग किया कि किसी का त्याग भी उसकी मृत्यु के समान ही होता है। लक्ष्मण के जाने के बाद श्री राम दुख के सागर में डूब गए। उन्होंने भी अब पृथ्वी त्यागने का निश्चय कर लिया था। भगवान अपनी समस्त प्रजा के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ वहां आ पहुंचे। उनके साथ अनेक दिव्य विमान शोभायमान थे। श्री राम ने ब्रह्मा जी से कहा कि वे उनके साथ आए संपूर्ण जन समुदाय को उत्तम लोक प्रदान करें। फिर सरयू में डुबकी लगाकर श्री राम अपने भाइयों के साथ वैष्णव तीज में प्रवेश कर गए। जिस किसी ने सरयू नदी में डुबकी लगाई, वो मनुष्य शरीर त्याग कर दिव्य विमान में जा बैठा। इस प्रकार श्री राम के सत्संग से सभी जीवों का कल्याण हो गया। सरयू के तट पर केवल हनुमान रह गए। भगवान राम ने उन्हें अजय और अमर रहने का आशीर्वाद देकर पृथ्वी पर राम भक्तों का कल्याण करने का आदेश दिया।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला, वही आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन जहां हर पल में है मस्ती, संगीत और बहुत सारी बातें आप सभी लिसनर्स के साथ। तो क्या कुछ है खास मनोरंजन के इस पिटारे में आपके लिए, कौन कौन से वो खास कार्यक्रम हैं जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ, चलिए बताते हैं आपको। खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ सुबह 7:57, 8:30 और 9:57 पर। देश और दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है ये जानने के लिए आपको हम लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। हिंदी में समाचार दिन में 12:00, 1:00, 2:15 और रात्रि 11:00। अंग्रेजी में समाचार दिन में 12:05, 1:05, शाम 7:05 और रात्रि 11:05 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 सुनिएगा रात्रि 9:00। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं सुबह 9:20, 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। आपकी सुबह को और भी हसीन और

0: खुशनुमा बनाने के लिए हम लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम गीत संगीत और जानकारी के साथ सुबह 7:15 पर। हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों का मीठा सा संगीत हम पहुंचाएंगे आप तक 8:30 पर। लोक संगीत 11:30 पर। पहाड़ी संगीत और शिखरों के स्वर कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 2:30 पर। कुछ नए पुराने दिलकश फिल्मी तराने आपके लिए फिल्म संगीत में सुबह 8:45, दिन में 12:10, 3:10, शाम 4:00 और रात्रि 8:30 पर। हिमाचल की किसी एक खूबसूरत जगह की सैर कीजिएगा हमारे साथ 9:30 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम में, और 10:00 सुनना ना भूलिए गीत गाता चल। पुराने दौर के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे आपके लिए 11:05 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। महिलाएं रोजाना सुनती हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सम्मेलन, दिन में 12:20 पर। म्यूजिक मस्ती के लिए बने रहिए हमारे साथ म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में, दिन में 1:10 पर। 2:00 आप सुनेंगे सबरंग FM शिमला के संग। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी लेकर आएंगे दिन में 3:30 पर। वहीं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होता है FM शिमला पर शाम 4:20 से, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम, 4:50 पर महास्वी कार्यक्रम, 5:20 पर किन्नौरी कार्यक्रम, 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम और 6:35 पर सुनिएगा कुल्लवी कार्यक्रम। किसान बागवान कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं शाम 7:10 पर। शाम की सभा का आगाज होता है FM शिमला पर 8:00 से, जहां पर सबसे पहले हम लेकर आते हैं आपके लिए भूले बिसरे गीत। एक फिल्म से ये कार्यक्रम रात 9:15 पर। 9:30 पर लेकर आएंगे दिल की आवाज भी सुन। गजलों की हसीन और खूबसूरत तो महफिल सजे की FM शिमला पर रात 10:00 और सदाबहार फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए रात्रि 10:30 पर। जी बिल्कुल डियर लिसनर्स, ये है वो कुछ खास कार्यक्रम जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 103.7 MHz पर।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

और एक नई शुरुआत भी लेकर आती है। पक्षियों की चहचहाहट, उगते सूरज की लालिमा और पहाड़ों पर बिखरी सुनहरी किरणें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें खुद नई ऊर्जा दे रही हो। देखिए, हर नई सुबह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी रुकी नहीं है। अगर कल मुश्किल था तो आज बेहतर हो सकता है। अगर कल कोई सपना आपका अधूरा रह गया तो आज उसे पूरा करने की शुरुआत की जा सकती है। तो आप भी उठिए, एक नए दिन का स्वागत कीजिए, नए दिन की शुरुआत कीजिए और लीजिए, हम भी आ गए हैं आपके लिए आपका अपना जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला लेकर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर लिसनर्स, स्वागत है आप सभी सुनने वालों का आज की इस सुहानी, रूहानी और मस्तानी सुबह में। जी हाँ, नई सुबह अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती, बल्कि नई उम्मीदें, नए सपने और

सुबह का टाइम है और इस वक्त आप अपने एक काम की तैयारी में होंगे। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर होंगे और कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के साथ कर रहे होंगे। तो आप जहाँ भी हैं, हम आपके साथ हैं इस खूबसूरत सुबह को और भी खास बनाने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया से गीतों के साथ। आप यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद लेते रहिए इन प्यारे प्यारे से गीतों का।

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

देखिए, इतिहास केवल अतीत की गाथा ही नहीं होता, बल्कि वो आईना भी होता है जो हमें वर्तमान को समझने और भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। हर दिन एक खास दिन होता है जो इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के साथ दर्ज हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज का दिन किन ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। आज है 13 मई सन 2026। भारतीय इतिहास में 13 मई का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन 1638 को शाहजहां की देखरेख में विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण शुरू हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जिसको 2007 में विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। तेरह मई 1880 को वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला ट्रायल लिया था। दो डिब्बों की इस ट्रेन को लगभग आधा किलोमीटर के ट्रैक पर चलाया गया और ट्रेन के इंजन को पुलमैन कहा गया। एडिसन के इस प्रयास को इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के पहले प्रयासों में गिना जाता है।

आपको बताएं, 13 मई 1888 को ब्राज़ील ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और ये निर्णय लेते हुए ब्राज़ील ने गुलामी प्रथा को समाप्त किया था। ब्राज़ील पश्चिमी गोलार्ध में गुलामी प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाला अंतिम राष्ट्र माना जाता है।

देखिए लिसनर्स, हेल्दी रहने के लिए अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के अलावा एक चीज़ सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रखती है और वो है हमारा खुश रहना। जी बिल्कुल, आजकल खुश रहना लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है और इसका एक ही कारण है, वो है हमारी बिजी लाइफ। और अपनी लाइफ में हम किसी न किसी काम में उलझे रहने के कारण कई तरह की परेशानियों से घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी आते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने तन और मन को खुशहाल बनाए रख सकता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि जिंदगी खुशियों और तकलीफों दोनों से भरी हुई है। हालांकि हर कोई सिर्फ खुशियों को ही पसंद करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुख भी है। तो अगर दुख भी हैं तो कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और रह भी सकते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम हमेशा खुश बने रहें और हमारी पूरी ज़िंदगी खुशहाली में ही बीते? जी बिल्कुल, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो इसके लिए अपनी आदतों में कई ज़रूरी बदलाव लाना भी ज़रूरी हो जाता है। और कौन कौन सी वो आदतें हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखिए, क्योंकि मुस्कान एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी तरह का गम भुलाया जा सकता है। और आपकी जो ये बेहद कीमती मुस्कुराहट है ना, आपके आसपास के लोगों को भी खुशी से भर देती है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। अपनी एक्सरसाइज को आप कभी भी मिस ना करें। रोज़ाना कसरत करने की आदत आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ और खुश रखने में मदद करती है। यकीन मानिए, अगर आप नियमित एक्सरसाइज की आदत को अपना लेंगे तो आगे की ज़िंदगी आपकी उतनी ही बेहतर और खुशहाल हो जाएगी। और भाई, सबसे ज़रूरी बात तो हम आपको बताना ही चाहेंगे, वो है कि हर परिस्थिति में अपनी सोच को जो है वो सकारात्मक बनाए रखें। जी, हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने से तन और मन दोनों को रिलैक्स रखने में मदद मिलती है। और नकारात्मक विचारों के चलते होने वाले बेवजह के जो तनाव होता है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है और जो आपकी ज़िंदगी है वो खुशहाल हो जाती है। बात करें हंसने और मुस्कुराने की, तो भाई हंसते मुस्कुराते रहने से खुशी अपने आप खींची चली आती है। कहते हैं दोस्तों कि हंसी बेहद संक्रामक होती है, इसलिए रोज़ाना कुछ देर हंसने और मुस्कुराने की आदत बनाइए। अगर आप इस आदत को अपनाएंगे ना, तो इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और जो आसपास आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी हमेशा बनी रहेगी। और देखिए ना, टेक्निकल चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे कई बार हम फेडअप हो जाते हैं। तो अकेले में समय बिताने के लिए कुछ समय के लिए

ये हमें सोशल साइट से दूरी बनाए रखनी चाहिए जिससे हमारा मन शांत हो जाए। और अपना मन शांत रखने के लिए आप सुन सकते हैं हमारे साथ FM शिमला, जहां पर खूब सारा मनोरंजन मस्ती है आप सभी लिसनर्स के लिए। और आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए ये लीजिए बहुत ही प्यारा सा गीत हम भेज रहे हैं आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर।

जी हाँ, गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से खुश रह सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हम आपको बता चुके हैं और कुछ बातें अभी बताना बाकी हैं। आपको बताएं हम कि टाइम मैनेजमेंट करें और अपनी प्रायोरिटी को सेट करें। जी बिल्कुल, अपने जीवन को खुशहाली से भरने के लिए समय के उचित प्रबंधन की जो टेक्निक है उसको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ना सिर्फ बेवजह का तनाव कम होता है बल्कि आपकी जो प्राथमिकता है उसको तय करने में भी मदद मिलती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि काम का दबाव कम होने से जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हमेशा बना रहता है और आप अपनी खुशी के लिए हमेशा वक्त निकाल पाते हैं। जी हाँ, बात करते हैं मी टाइम यानी खुद के लिए समय निकालिए। ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपने साथ वक्त बिताने की आदत को ज़रूर डेवलप कीजिएगा। इस मी टाइम का जो आप इस्तेमाल है वो अपना पसंदीदा काम करने में ज़रूर कीजिए। खुद की देखभाल करना आपकी लाइफ को हमेशा ही खुशियों से भर देता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने खान पान को सेहतमंद बनाएं। सही संतुलित और सेहतमंद डाइट लेने से दिन भर ताजगी बनी रहती है। ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां, गर्म और साफ़ सुथरा खाना खाने से शरीर के साथ ही मन भी ऊर्जा से भरा रहता है। और ये जो अच्छा खान पान है ना आपका, वो आपको हमेशा ही अच्छा और खुश बना ही रखता है। तो डियर लिसनर्स, बस इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी हमेशा खुश रखिए।

वेल डियर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए आपको बता दें कि आज आप हमारे साथ FM शिमला पर कौन कौन से कार्यक्रम किस समय पर सुन सकते हैं, इसकी आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे दें। 9:31 पर आप सुनेंगे कुदरत के रंग कार्यक्रम। जी बिल्कुल, हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों की सैर करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा हमारे साथ कुदरत के रंग कार्यक्रम में 9:30 पर। पुराने फिल्मी गीतों को सुनने का शौक अगर आप भी रखते हैं तो 11:05 पर आपके लिए हम पेश करेंगे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। महिलाएं बड़ी ही बेसब्री और बेताबी से इंतजार करती हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन का, जो हर रोज पेश किया जाता है दिन में 12:20 पर। म्यूजिक मस्ती के लिए बने रहिए हमारे साथ, दिन में 1:10 पर लेकर आएंगे म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम, और 2 FM शिमला पर बिखरेंगे संगीत के विविध रंग सबरंग कार्यक्रम में। तो बस इन बढ़िया बढ़िया से कार्यक्रमों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर। फिलहाल FM शिमला पर समय है FM न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम हर विधानसभा की रीढ़ होते हैं और ये नियम सदन में कामकाज को नियंत्रित करने, अनुशासन बनाए रखने व लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करते हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधान मंडलों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों में राष्ट्र स्तर पर एक समानता लाने के लोकसभा के प्रयास सराहनीय हैं। प्रदेश भाजपा ने नगर निगमों सोलन, पालमपुर और धर्मशाला के आगामी 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए कल अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश

0: भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन नगर निगम, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम व चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता पूरी तरह त्रस्त है। पालमपुर में नगर निकाय चुनावों के प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश, विशेषकर पालमपुर में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और हिमाचल की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ चलने का मन बना चुकी है। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं समाचारों के लिए। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
3: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
2: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नित्य

0: इन नवीन भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते

0: हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते

0: हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office in secrecy to Mr. Rangasamy. More from our correspondent.
4: In stark

0: measures, reports the Times of India. Under the headline, In a Shifting World Order, Five Principles Should Guide India's Diplomacy, notes an editorial in the Indian Express, adding, In foreign policy, there is no substitute for nurturing trusted partnerships, even while seeking new opportunities. Iran's Arakchi, Russia's Lavrov to be in Delhi for BRICS huddle, reports the Indian Express. The Economic Times, noting the war impact on growth and current accounts, cites PMO stitching a plan to boost foreign fund flow with steps to ease FEMA rules. A headline in the Tribune writes early monsoon likely, Andaman Sea may witness onset by May 16. And finally, a trailblazing first in 145 years at the prestigious institution St. Stephen's College, ready for its first ever woman principal, writes the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर ये समय है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। धर्मशाला पहुंची मुंबई इंडियन की टीम, कल पंजाब किंग्स के साथ होगा मुकाबला। पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा रद्द, 24 लाख से ज्यादा करीब विद्यार्थी हुए आहत, दोबारा ली जाएगी परीक्षा। नगर निगम शिमला के सहकर्मियों की 10% वार्षिक वेतन वृद्धि समाप्त करने के खिलाफ सहब सोसाइटी यूनियन ने 15 मई से शहर के घरों से कूड़ा ना उठाने के साथ ही यूनियन की बैठक में 15 मई से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रह सकती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुनः पंजीकरण के लिए वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने जुलाई 2025 सत्र में विभिन्न मास्टर डिग्री तथा बैचलर्स डिग्री कोर्सेज में परीक्षा अगले वर्ष के लिए पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। साथ ही सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत जनवरी 2026 सत्र के विद्यार्थी भी अगले सेमेस्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुनः पंजीकरण ऑनलाइन होगा, जिसके लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। ये जानकारी इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जोगिंदर कुमार यादव ने दी। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग को लोक निर्माण विभाग ने छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। करीब 14,500 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले इस मार्ग के खुलने से पांगी घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है और वाहनों की आवाजाही आरंभ होने से घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से जुड़ गया है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को भी आधिकारिक रूप से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रोजेक्ट हिमांक की स्नो क्लियरेंस टीम ने सड़क संपर्क बहाल करने की उपलब्धि हासिल की है। सीमा सड़क संगठन की टीमों द्वारा बर्फ हटाने का कार्य 16 मार्च से शुरू किया गया था और शून्य से नीचे तापमान व हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम करते हुए इस मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। न्यूज़ हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। जी हाँ, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राकेश कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ।

इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, FM शिमला पर अब हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए गीतों के अनमोल खजाने से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं सिलसिला फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना नूरी फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में साथ साथ फिल्म का ये गीत।

0: रूना लैला और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में आइए सुनते हैं घरौंदा फिल्म का ये गीत।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। चलिए अब आपको बता दें हमारी आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:31 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। 10 बजे का समय रहेगा रिमझिम कार्यक्रम का। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर सुनिए लोक संगीत और 11:30 पर पेश किया जाएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:20 पर। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 1:10 पर और 2 बजे का समय रहेगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम का। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए हिमगुंजन कार्यक्रम और 2:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत।

शाम को 7:10 पर किसान बागवान सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। 8 आप सुनेंगे धारारे गीत। आठ बजकर 15 पर सुनिए

फिल्म संगीत और 8:30 पर आनंद लीजिए सुगम संगीत का। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता आपके लिए पेश किया जाएगा 9:15 पर और 9:30 पर। सुनिए चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दस बजे सुनिए फिल्म संगीत और 10:30 पर आप सुन पाएंगे सुर बहार कार्यक्रम। जी हाँ, ये है हमारे आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 9:20 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा। हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR व DTH पर भी उपलब्ध है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, नीट परीक्षा पेपर लीक मामला, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, दूरदराज क्षेत्रों तक चुनाव तैयारियां जोरों पर। वेतन में देरी और लंबित देनदारियों को लेकर एचआरटीसी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सुबह 10 बजे से प्रदेश भर में थमेंगे बसों के पहिए। और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु ने शिमला में किया निरीक्षण, निष्पक्ष पारदर्शी और सुचारू चुनाव के लिए दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत पर आघात बताते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से करवाने की मांग की है। अनुराग शर्मा ने कहा है कि देश भर में करीब 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 32,000 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक घर से दूर रहकर कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, जिसकी वजह से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
1: जो हमारे छात्रों के साथ भारतवर्ष में इतना बड़ा जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके लगभग 2 सालों से 3 सालों से घर से दूर रह के कैसे पढ़ाई करके नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। नीट का एग्जाम होता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आज उसको दुर्भाग्यवश पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार चल रही है, ये केंद्र में कैसी सरकार है। और मैं तो सीधा हमला भाजपा सरकार पे करता हूँ कि ये जो एक विद्यार्थियों के साथ एक घिनौना कार्य किस लिए हुआ, इसके पीछे कौन दोषी है। आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष में लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट का एग्जाम दिया था, हिमाचल प्रदेश में ये संख्या 32,000 के लगभग है। एक बहुत मेहनत होती है विद्यार्थियों की, उनके परिवार की, जो हमने भी देखे हैं, बच्चे लगभग 20 घंटे पढ़ाई करते हैं और उनके जीवन का एक सपना होता है कि नीट क्वालिफाई करना है।

0: पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, वहीं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक इन चुनावों को संपन्न करवाने की तैयारियां भी जोरों पर है। चंबा जिला में इस बार करीब 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, जिसके लिए जिले में 1020 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र चस्क भटोरी जिला का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। वहीं जिले में 7 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिसमें भटियात विकास खंड की 109 वर्षीय आशा देवी सर्वाधिक उम्रदराज मतदाता है। जिले में इस बार 1741 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल्लू में नगर परिषद चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। नगर परिषद अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अनारक्षित वार्डों से भी चुनाव मैदान में है तथा पुरुष उम्मीदवारों को सीधी टक्कर दे रही है। नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में 27 महिला उम्मीदवार मैदान में है। मंडी नगर निगम चुनावों में प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की जनता के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस सरकार ने मंडी के विकास को ठप्प करने का अभियान शुरू कर दिया था।
1: नगर निगम मंडी में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं होना, जो पैसा दिया था 15 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए वो पैसा भी वापिस ले लिया, और मंडी नगर निगम की बात तो छोड़िए, पूरे मंडी जिला को पूरी तरह से विकास के रास्ते से हटा दिया है, नक्शे से हटा दिया है ऐसा लगता है। और इसलिए यहाँ बहुत बड़ा गुस्सा है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ।
0: नगर निगम मंडी में भाजपा व कांग्रेस दोनों दल प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस के नगर निगम चुनाव प्रभारी व कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव अभियान के दौरान भाजपा शासित नगर निगम पर पिछले 5 वर्षों में मंडी की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासनकाल में शहर की जनता को पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी में 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा शहर को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पाई। उन्होंने भरोसा जताया कि शहर के चहुंमुखी विकास के लिए जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन न मिलने के चलते आज सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। HRTC ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ने बताया कि परिवहन निगम कर्मियों को हर महीने देरी से वेतन मिल रहा है और 12 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक प्रदेश में 12,000 से अधिक HRTC कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की लंबित देनदारियां और मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा, ऐसे में निर्णय लिया गया है कि जब तक वेतन कर्मचारियों के खातों में नहीं आता, प्रदेश में आज से बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखवीर सिंह संधु ने कल शिमला के शोघी स्थित एक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं समेत आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित हो ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान सूची से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाए। राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित JBT भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 मई से आरंभ होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वहीं राज्य चयन आयोग ने हाल

0: ही में संपन्न सहायक स्टाफ नर्स पदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से 15 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के आवंटन के विकल्प आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय में अथवा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे देश में स्वास्थ्य व योग क्रिया को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 100 दिन निशुल्क लाइव योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के क्रम में ऑनलाइन योग को बड़े पैमाने पर आयोजित कर प्रस्तावित 27 मई को विश्व रिकॉर्ड बनाना है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रतिभागी 14 दिवसीय संचरित योग कार्यक्रमों में से विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। ये सत्र आयुष मंत्रालय द्वारा अपने YouTube चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, वृद्धावस्था पेंशन फर्जीवाड़े में FIR, 44 लोगों के साथ अफसर भी जाँच के घेरे में। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का 4 दिनों के अंदर होगा भुगतान। पंजाब केसरी की एक खबर है, 42 दिन बाद मनाली लेह मार्ग बहाल, जल्द शुरू होगी वाहनों की आवाजाही। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है, किसी कर्मचारी को निलंबित करने से पूर्व नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं। दैनिक जागरण की एक खबर है, शाहपुर में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल गिरा, आयुष्मान को केंद्र से आए 50 करोड़ खर्चा हो गया 155 करोड़। शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का फंडिंग फार्मूला अन्य राज्यों की तरह हिमाचल पर भी पड़ रहा भारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग। पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, दूरदराज क्षेत्रों तक चुनाव तैयारियां जोरों पर। वेतन में देरी और लंबी देनदारियों को लेकर HRTC कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सुबह 10 बजे से प्रदेश भर में थमेंगे बसों के पहिए। और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु ने शिमला में किया निरीक्षण, निष्पक्ष पारदर्शी और सुचारू चुनाव के लिए दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे नमी,
2: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आज के संगीतमय सुरमई सफ़र में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर अब हम लेकर आए हैं आपका अपना जाना पहचाना कार्यक्रम, नाम है जिसका कुदरत के रंग। आज इस कार्यक्रम में हम निकलेंगे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत झीलों की सैर पर, जहां पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि कहानियां सुनाता है। ऊंची ऊंची पहाड़, ठंडी हवाएं, देवदार के जंगल और उनके बीच चमकती शांत झीलें, ऐसा लगता है मानो धरती पर जन्नत उतर आई हो। तो

बहुत सारी बातें होंगी आपकी और हमारी, फिलहाल रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। आपको सुनवा रहे हैं ये ब्यूटीफुल म्यूजिकल नंबर, आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हसीन और खूबसूरत सफर को। सबसे पहले चलते हैं सिरमौर जिले की मशहूर रेणुका झील की ओर। ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। देखिए, इस झील के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसका आकार देखने में एक सोई हुई महिला जैसा लगता है। मान्यता है कि ये झील माता रेणुका से जुड़ी हुई है, जो भगवान परशुराम की माता थी। झील के चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और पक्षियों की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति धीरे धीरे कोई मधुर गीत गा रही हो। यहाँ आकर लोग बोटिंग का मज़ा लेते हैं, परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं और सुकून के कुछ पल बिताते हैं।

देखिए लिसनर्स, हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की वादियाँ, नदियाँ और झीलें हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाती हैं। कुछ झीलें धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हैं, कुछ रोमांस से, और कुछ ऐसी जहाँ पहुँचकर बस मन शांत।

और अब बात करते हैं चंद्रताल झील की। चंद्रताल यानी चांदी की झील, दोस्तों इसका नाम ही इसकी खूबसूरती बयां कर देता है। चांद की झील के नाम से ये प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील नीले आसमान को अपने पानी में ऐसे समेट लेती है जैसे कोई आईना हो। कहा जाता है कि महाभारत काल में यहीं से भगवान इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में स्वर्ग लेकर गए थे। रात के समय जब चांद की रोशनी इस झील पर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी झील चांदी से चमक रही हो। और अब चलते हैं कुल्लू घाटी की ओर, जहां बसी है भृगु झील। ये झील ट्रैकिंग प्रेमियों की पहली पसंद मानी जाती है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों और हरे घास के मैदानों से घिरी हुई है। मान्यता है कि महर्षि भृगु यहाँ तपस्या किया करते थे, इसलिए इसका नाम भृगु झील पड़ा। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन ऊपर पहुँच कर जो नज़ारा मिलता है ना, वो सारी थकान को मिटा देता है।

वेल आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, आनंद ले रहे हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम का, जहां पर हम आज सैर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत झीलों की। तो चलिए अब बात करते हैं आस्था और श्रद्धा की चंबा जिले में स्थित मणि महेश झील की। जी हाँ डी लिसनर्स, ये झील भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। इसके पीछे दिखाई देने वाला मणि महेश कैलाश पर्वत इस जगह की सुंदरता को और भी दिव्य बना देता है। हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं और पवित्र झील में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खजियार झील, भाई इस झील को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसे हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। जी हाँ, खजियार झील की हम बात कर लेते हैं। देवदार के घने जंगलों और हरे भरे मैदानों के बीच बनी ये छोटी सी झील बेहद मनमोहक लगती है। यहाँ लोग घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग और प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। बारिश के बाद तो भाई ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है।

लगता है और करेरी गांव धौलाधार पर्वतमाला पर ट्रैक करने वालों के लिए एक बेस कैंप की तरह भी काम करता है। झील के दौरान सर्दियों के दौरान ये झील जो है वो जमी रहती है और यहाँ धर्मशाला के पास मौजूदा गांव से होते हुए भी जाया जा सकता है। बात करें पराशर झील की तो मंडी से 50 किलोमीटर की चढ़ाई पर एक पक्की सड़क यात्रियों को बग्गी गांव से होते हुए पराशर झील तक ले जाती है। यात्री झील तक ट्रैक कर कामरू घाटी में कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग की शुरुआत कर रहे लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। हिमाचल की इस छिपी हुई झील की पहली झलक भाई किसी जादू से कम नहीं लगती। धनकर झील की बात करें तो ये गोम्पा में से एक धनकर यहाँ ऊंची पहाड़ियों के टॉप पर मौजूद है और इस पहाड़ी से 20 मिनट के ट्रैक के बाद ही यात्रियों को धनकर झील की झलक मिलती है। जी बिल्कुल, आप यहाँ जब जाएं तो 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ये झील बर्फीली बंजर चट्टानों से घिरी हुई है और यहाँ से स्पीति और पिन नदी के जादुई संगम का ये नज़ारा भी पेश करती है। धनकर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झीलों में से एक मानी जाती है। चंद्रताल झील की बात करें तो हम आपको बताएं बीते हुए कुछ सालों से ये झील ट्रैकर्स की पसंदीदा जगह के रूप में उभर कर सामने आई है। रोमांच के दीवाने या बट्टल के रास्ते से या कंजुम दर्रे से होते हुए लोग यहाँ पहुँचते हैं। पूरे हिमाचल में सबसे शानदार ये झीलें ऊंचे समुद्र टापू पठार के बीचों बीच छिपी हुई हैं और रात को तारों भरे आसमान तले ये बहुत ही अच्छी दिखाई देने वाली बहुत ही बढ़िया एक परफेक्ट जगह भी मानी जाती है।

चलते चलते नाको झील की बात कर लें। नाको गांव में किसी नगीने की तरह छिपी है नाको झील, जो उस गांव के पीछे की तरफ पड़ती है। हरे पेड़ों से घिरी ये झील शाम बिताने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और आपको बताएं कि एक छोटी सी ऊंची चढ़ाई की मेहनत आपको नाको गांव और झील का शानदार नज़ारा दिखाती है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक मानी जाती है।

0: वेल कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लीजिए अब सुनिए एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, वहीं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक इन चुनावों को संपन्न करवाने की तैयारियां जोरों पर हैं। चंबा जिला में इस बार करीब 4 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, जिसके लिए जिले में 1020 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र चस्क भटोरी जिला का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। कुल्लू में नगर परिषद चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। नगर परिषद अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं के लिए सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि अनारक्षित वार्डों से भी चुनाव मैदान में हैं तथा पुरुष उम्मीदवारों को सीधे टक्कर दे रही हैं। नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में 27 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। मंडी नगर निगम चुनावों में प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की जनता के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस सरकार ने मंडी के विकास को ठप करने का अभियान शुरू कर दिया था।

0: मंडी में भाजपा व कांग्रेस दोनों दल प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस के नगर निगम चुनाव प्रभारी व कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रचार अभियान के दौरान भाजपा शासित नगर निगम पर पिछले 5 वर्षों में मंडी की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत पर आघात बताते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति को करवाने की मांग की है। अनुराग शर्मा ने कहा कि देश भर में करीब 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 32,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कल शिमला में केशोगी में स्थित एक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं समेत आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन न मिलने के चलते आज सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि परिवहन निगम कर्मियों को हर महीने देरी से वेतन मिल रहा है और 13 तारीख होने के बावजूद अभी तक भी प्रदेश में 12,000 से अधिक एचआरटीसी कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को लंबित देनदारियों और मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं हो रहा है। राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित जेबीटी भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि इन उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 मई से आरंभ होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसका शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। वहीं राज्य चयन आयोग ने हाल ही में संपन्न सहायक स्टाफ नर्स पदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने वाली सभी अभ्यर्थियों से 15 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के आवंटन के विकल्प आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय में अथवा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुनः पंजीकरण ऑनलाइन होगा, जिसके लिए यह लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। न्यूज़ हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर आज के इस हसीन और खूबसूरत सफ़र में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर अब हम लेकर आए हैं आपके लिए गीत गाता चल कार्यक्रम।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा सिंह की आवाज़ों में अभी आपने सुना लव फिल्म का गीत, साजन फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

मैंने प्यार किया, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं गीत गाता चल कार्यक्रम का। चलिए अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म है कयामत से कयामत तक।

बाजीगर फिल्म का गीत अभी आपने सुना विनोद राठौर की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत गाता चल, इस समय आप सुन रहे हैं हमारे साथ FM शिमला पर।

सड़क फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में तमन्ना फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

अब अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा को दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यूं ही सुनते रहिए हमारे साथ FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अभी तक वेतन न मिलने के चलते आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। HRTC ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ने बताया कि परिवहन निगम कर्मियों को हर महीने देरी से वेतन मिल रहा है और 13 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक प्रदेश में 12,000 से अधिक HRTC कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित देनदारियों और मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि जब तक वेतन कर्मचारियों के खातों में नहीं आता, प्रदेश में आज से बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के 27 डिपो में सुबह 10 बजे से बसें खड़ी कर दी गई है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मेहनत पर आघात बताते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से करवाने की मांग की है। अनुराग शर्मा ने कहा है कि देश भर में करीब 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 32,000 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक घर से दूर रहकर कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, जिसकी वजह से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, वहीं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक इन चुनावों को संपन्न करवाने की तैयारियां जोरों पर है। चंबा जिला में इस बार करीब 4,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, जिसके लिए जिले में 1,020 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र चस्क भटोरी जिला का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। वहीं जिले में 7 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनमें भटियात विकासखंड की 109 वर्षीय आशा देवी सर्वाधिक उम्रदराज मतदाता है। जिले में इस बार 1,741 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुल्लू जिला में नगर परिषद चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। नगर परिषद अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है, जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अनारक्षित वार्डों से भी चुनाव मैदान में है तथा पुरुष उम्मीदवारों को सीधी टक्कर दे रही है। नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में 27 महिला उम्मीदवार मैदान में है। पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है और कुल्लू जिला में एक महिला समूह ने इस दिशा में बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। यहां राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत काईसधार में 15 महिलाओं के एक समूह ने 1 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व बाड़बंदी का कार्य करते हुए देवदार और बान के पौधे रोपित किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महिलाओं का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसी का एक प्रेरणादायक उदाहरण कुल्लू जिला के राधा रानी मंडल बुआई ने प्रस्तुत किया है। मंडल की 15 महिलाओं ने फॉरेस्ट रेंज भुट्टी के काईसधार बीट में पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया है। महिलाओं ने घरेलू जिम्मेवारियों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की है। राधा रानी मंडल बुआई की महिलाओं ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत काईसधार में 1 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व बाड़बंदी का कार्य करते हुए देवदार और बान के पौधे

0: रोपित किए। महिलाएं केवल पौधारोपण तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि इन पौधों की देखरेख की जिम्मेवारी भी मंडल ने स्वयं उठाई है। इसके अलावा पौधों को पशुओं से बचाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी भी की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कल शिमला के शोघी स्थित एक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं समेत आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित हो, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाए। राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित JBT भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 मई से आरंभ होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वहीं राज्य चयन आयोग ने हाल ही में सम्पन्न सहायक स्टाफ नर्स पदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से 15 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के आवंटन के विकल्प आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय में अथवा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 11:06 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आज के इस सफर में मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर रीना वर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये समय है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का। पुरानी फिल्मों के सफर, जहां हर गीत हमें उन सुनहरे दिनों की याद दिलाता है जब संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता था बल्कि दिल में बस जाया करता था। पुरानी फिल्मों के गीत में वो मिठास है जो आज भी हर उम्र के श्रोता को अपनी ओर खींच लेती है। कभी किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज तो कभी लता मंगेशकर की मधुरता, हर गीत अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर आता है। अनपढ़ फिल्म का गीत सुनिए, आवाज है लता मंगेशकर की।

पुराने फिल्मों के इस सफर में आप सुन रहे हैं पुराने दौर के कुछ सदाबहार नगमे, जिनमें प्यार भी है, दोस्ती भी और जिंदगी के खूबसूरत एहसास भी। बादल फिल्म में लीजिए सुनिए मन्ना डे को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार उषा खन्ना।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। वो दौर ही कुछ अलग था, जब गीतों में सादगी थी, शब्दों में गहराई थी और धुनों में दिल को छू लेने वाला अपनापन। पुरानी फिल्मों के गाने आज भी हमें जिंदगी के हर रंग से जोड़ देते हैं, हरियाली और रास्ता। इस फिल्म में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के साथ मुकेश को। बोल हैं हसरत जयपुरी के, तर्ज दी है शंकर जयकिशन ने।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मों से कार्यक्रम। रफी साहब की सुरीली आवाज हो या मुकेश के दर्द भरे नगमे, इन गीतों का जादू आज भी वैसा ही कायम है। प्यार का मौसम इस फिल्म में लीजिए सुनिए रफी साहब को। गीतकार है मजरूह, संगीतकार आर डी बर्मन।

दोस्तों, वक्त भले ही आगे बढ़ जाता है, लेकिन पुराने गीत हमेशा दिल के किसी कोने में मुस्कुराते रहते हैं। आज पुरानी फिल्मों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पुराने गीत। आराधना फिल्म का ये गीत है, आवाज किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एस टी बर्मन।

पुरानी फिल्मों के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद है पुरानी फिल्मों के इन सदाबहार गीतों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा और पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया होगा।

0: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला। शिमला
1: कहाँ ये यारियाँ थी तेरे मिलने से पहले।
0: खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।
1: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आइए सुनते हैं पहाड़ी संगीत। पहाड़ी गीत सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और मिट्टी की खुशबू को अपने सुरों में समेटे होते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप, नाटी की मस्ती और लोक धुनों की मिठास हर किसी का मन मोह लेती है। तो चलिए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल को।

पहाड़ी संगीत में एक अलग ही अपनापन होता है। यहाँ के गीत कभी खेतों की खुशबू सुनाते हैं तो कभी मेलों और त्योहारों की रौनक। लीजिए सुनते हैं गीता शर्मा को।

हिमाचल की वादियों में गूंजते ये गीत हमारी संस्कृति और परंपराओं की पहचान है। पहाड़ी संगीत हर पल को खास बना देता है। लीजिए सुनते हैं लहरू राम सांख्यान को।

पहाड़ी गीत जिंदगी के हर रंग को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां करते हैं। लीजिए सुनते हैं जिया लाल ठाकुर को।

पहाड़ी गीतों की यही खासियत है, इसमें अपनापन भी है, संस्कृति की झलक भी और दिल को छू लेने वाली सादगी भी। उम्मीद है लोक धुनों की इस मिठास ने आपके मन को सुकून दिया होगा और आपको हिमाचल की खूबसूरत वादियों के और करीब लाया होगा। 103.8

0: 7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। 12 बजने को हैं। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीत।

मिस्टर इंडिया फिल्म में अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को सुना। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। परिणीता इस फिल्म में, लीजिए सुनिए सोनू निगम के साथ श्रेया घोषाल को।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से महिलाएं सुनेंगी अपना दैनिक कार्यक्रम महिला सम्मेलन। आप हमारा ये कार्यक्रम FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। अब से लेकर ठीक 1 बजे तक का ये सफ़र आप हमारे साथ तय करेंगे। हम रहेंगे आपके साथ सपना शर्मा
1: और कल्पना ठाकुर। आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: कल्पना, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। सपना, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ कल्पना। और देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो तमाम सुनने वाले श्रोता हैं, वो भी अच्छे होंगे। और देखिए, हमारी जो बहनों का ये पसंदीदा कार्यक्रम है महिला सम्मेलन, अपने जो बिजी शेड्यूल में से ना थोड़ा सा समय निकाल कर वो इसे ज़रूर सुन रही होंगी।
1: जी बिल्कुल, सुन रही होगी। और देखिए, बहनों को वैसे ही इंतज़ार रहता है इस पसंदीदा कार्यक्रम का
0: जी,
1: क्योंकि इसमें हम ढेर सारी जानकारियाँ तो अपनी बहनों के लिए लेकर आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मनोरंजन के लिए गीत भी सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल कल्पना भाई, मनोरंजन करवाना तो जरूरी है
1: जी,
0: क्योंकि इसके बिना हमारा कार्यक्रम अधूरा है
1: जी।
0: तो बहनों, आपके लिए गीत संगीत भी हम लेकर आए हैं और ढेर सारी जानकारी भी लेकर आए हैं। तो आपको ट्यून इन रहना है इसी फ्रिक्वेंसी पर और सुनते रहना है अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम
1: जी। एक सुविचार आपके साथ साझा कर रहे हैं कि
0: जी,
1: यदि आप उम्मीद का दामन थामे हैं तो हौसला जरूर रखें
0: जी,
1: क्योंकि नाकामियां जब चरम पर होती है ना तो सफलता बेहद पास होती है।
0: बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। अब देखिए ना, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखिए बात करना बहुत पसंद होता है
1: जी,
0: और ये अच्छी बात भी है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो देखिए, हमारे मन में जो विचार होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है ना, उन्हें भी व्यक्त करने का हमें मौका मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल। और सपना, देखिए, बोलना ना एक कला है
0: जी,
1: जिसे सीखकर हम दूसरों के मन में अपनी जगह बना सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और समय के साथ हम देखिए, तुतलाना तो सीखते हैं, तुतलाते हैं जब छोटे से होते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम स्पष्ट बोलना सीख जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर हम सोचते हैं कि अब हम अपनी बातें जो है पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन बहनों, क्या आपको पता है कि हम बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन असल में हमें बोलना क्या चाहिए, कब क्या कहना चाहिए, वो हम उम्र भर सीखते ही रह जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि हमें बोलना क्या है और क्या कहना है, क्या नहीं कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। और अगर हम ये हुनर सीख लेना तो मुझे लगता है कि जीवन की जो आधी परेशानियां हैं ना बहनों, वो यूं ही खत्म हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, अक्सर हम क्या होते हैं कि बहिर्मुखी होते हैं
0: जी,
1: हमारे पास अपने कहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं अपनों से, जो हमें लगता है कि हमें दूसरों को ज़रूर सुनानी चाहिए। हमें कई बार लगता है ना कि हमारे मन में ये बात है जो हमें तो पता है लेकिन दूसरों को भी पता होनी चाहिए। लेकिन बहनों, असल बात ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो हम आमतौर पर ज़्यादा सुनते नहीं हैं दूसरों की, हम सुनते नहीं हैं और अपनी ही बातें कहती जाते हैं। और सच कहे तो इस वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाते हैं।
0: जी बिल्कुल सही। लेकिन बहनों, क्या आपको पता है कि बोलने से ज़्यादा हमें दूसरों को सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है
1: जी,
0: जिससे क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित होते हैं
1: जी। और सपना, देखिए, कम बोलने और ज़्यादा सुनने का अभ्यास करके हम बातचीत में अपनी बात बार बार कहने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल,
1: क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ अनूठे अनुभव, कौशल और हुनर होते हैं जो शायद हम और आप नहीं जानते हैं
0: जी। हाँ, दूसरों को ज़्यादा सुनने से बहनों हम बहुत कुछ सीखते हैं। संवाद सिर्फ बहनों बातचीत नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच का जो है ना वो संतुलन है। इसमें एक वक्ता और देखिए दूसरा श्रोता होता है
1: जी।
0: लेकिन अगर एक ही कहता रहेगा तो देखिए ना, दूसरा क्या होगा कि खुद को नीरस महसूस करेगा।
1: इसलिए बहनों, जब बातचीत हो रही हो तो केवल आप ही कहते ना रहे बल्कि दूसरों को भी कुछ कहने का मौका दे
0: जी,
1: ताकि बातचीत किसी के लिए बोरिंग ना लगे
0: जी। हाँ, और ज्यादा बोलने की बजाय ना बहनों

0: दोस्तों, ज़्यादा सुनना ही बेहतर होता है। जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो आप बात के दूसरे पहलू को आसानी से समझ सकते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं।
1: और सपना, जब ऐसा करते हैं ना हम, तो उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति आदर का भाव आता है
0: जी।
1: और इसके साथ साथ हम उनकी बातों को सुनते हैं, उसमें रुचि ले रहे हैं, और आप क्या करेंगे कि उनकी बातों को समझ भी पाएंगे। इससे सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो जाएगा कि मेरी बात भी सुनी गई है, और आप भी अपने मन के विचार जो है उसके साथ साझा कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। और देखिए बहनों, जब हम ज़्यादा बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो भी वेस्ट हो जाती है
1: जी।
0: कभी कभी ज़्यादा बोलने के चक्कर में हम वो भी बोल जाते हैं जो शायद हमें नहीं कहना चाहिए, और फिर क्या होता है, फिर बाद में हमें पछतावा होता है
1: जी। इसलिए कोशिश करें उतना ही बोले जितना आवश्यक हो
0: जी।
1: और बहनों, जो लोग चुप रहते हैं ना, या फिर कम बोलते हैं, उनमें ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है, उनका जो शब्द कोश है वो बहुत बड़ा होता है, वे बातों को बड़ी गहराई से समझते हैं और निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं
0: जी। हाँ, और देखिए, कम बोलने से बहनों आपकी बातों में गंभीरता आती है, और सभी जो है ना आपकी बात को ध्यान से भी सुनते हैं। तो बहनों, जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को देखिए अच्छा भी महसूस होता है, और सुनने से दूसरों की बातों को अच्छे से समझा भी जा सकता है
1: जी। और इस वजह से आप एक सही प्रतिक्रिया भी दे पाते हैं, और अगर आप सोच समझ कर कुछ भी कहते हैं ना बहनों, तो लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे समझते हैं कि आप तभी बात करते हैं जब ज़रूरत होती है
0: जी। हाँ,
1: और बहनों, कम बात करने वाले ऐसे शब्दों का चयन करते हैं ना जिससे सामने वाला व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उनका शब्द कोश जैसा कि कहा विशाल होता है। और बहनों, इसीलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि कम बोलने की कोशिश कीजिए और सुनने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों को सुनेंगे तो यकीनन आप खुद भी अच्छा महसूस करेगी और सामने वाला व्यक्ति भी खुद को सहज महसूस करेगा।
0: बिल्कुल कल्पना, तो अपनी बातों को थोड़ा सा विराम हम यहाँ पर देते हैं और अपनी बहनों को लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए कल्पना, अब हम कार्यक्रम में अपनी बहनों से बात करेंगे कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल। तो बहनों, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि हम सभी छोटी छोटी बातों पर जो है ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई कुछ भी कह देता है, हम उन सभी बातों पर एकदम से प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। और हद तो तब हो जाती है ना जब कोई आपस में बात कर रहा हो और हमें लगता है कि वो सिर्फ जो है हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं या हमारे लिए ही कुछ कह रहे हैं। इस पर हम अपने दिमाग पर जो है ना ज़्यादा जोर देने लगते हैं और अपने काम से भी हम भटक जाते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन अपने मन को शांत और मजबूत बनाकर हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं।
0: जी
1: जब हमारा मन मजबूत होता है ना बहनों, और मानसिक तौर पर हम जब शांत रहते हैं, तो हम केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती है,
0: जी
1: जिन्हें हम सुलझा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसके लिए कि हमें क्या करना होगा, हमें देखिए नियमित रूप से ध्यान, योग और व्यायाम करना होगा।
1: जी
0: इससे क्या होगा कि नकारात्मक विचार जो है हमारे मन में नहीं आएंगे, वो बाहर निकलेंगे और हम सकारात्मक रूप से मजबूत बनेंगे।
1: जी हाँ बहनों, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर हम खुद को मजबूत बना सकते हैं, और जो ये फालतू की परेशानियां हैं ना, उन्हें दूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और सबके प्रति एक अच्छी सोच रखना और दूसरों की मदद करना हमारे मन को खुश रखने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारा मन भी मजबूत होता है और एक अंदर से हमारे आत्मविश्वास भी जो है जागृत होता है।
0: जी हाँ, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण मन को संतुलित रखने के लिए बहनों बेहद ज़रूरी है।
1: जी
0: जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम किसी भी समस्या का जो समाधान है ना वो खुद निकाल सकते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा।
1: जी और जब आपका मन जो है वो तभी शांत रह पाता है ना, जब आप पर्याप्त नींद लेती है।
0: जी
1: क्योंकि जो नींद है ना, वो एक तरह से दवा का काम करती है।
0: बिल्कुल,
1: जब हमारा शरीर पूरे दिन भर के काम से थका रहता है, और रात को जब हम अच्छी नींद लेते हैं, 8 घंटे की जो नींद होती है, उससे हमारे शरीर को आराम तो मिलता ही है, लेकिन जो हमारा मन होता है ना, वो भी शांत होता है, स्थिर होता है, या यूं कहे कि हमारा मन और दिमाग चार्ज हो जाता है और तनाव भी खत्म होने लगते हैं।
0: जी हाँ। और अपने खान पान में भी देखिए बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है बहनों। पौष्टिक और संतुलित आहार लेने से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है।
1: जी
0: साथ ही अच्छा स्वास्थ्य हमारे मन को भी शांत रखता है। इसके अलावा देखिए क्या करना है, हमें सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करना है। इससे भी मानसिक तनाव जो है ना वो कम होता है अगर हम इसका कम इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ हमारा मन जो है वो भी शांत रहेगा।
1: जी बिल्कुल। और बहनों देखिए, जब हमारा मन शांत रहता है ना, तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। कोई भी कार्य अगर हमें करना है, कहीं पर भी हमें आगे बढ़ना है, या फिर हमारा कोई लक्ष्य है, वो हम तभी हासिल कर पाते हैं जब हमें खुद पर भरोसा होता है।

0: के अंदर विश्वास होता है, और जब ये आत्मविश्वास हम जगाते हैं ना, तभी हम बड़ी से बड़ी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं और बड़े से बड़ी दिक्कतों का सामना भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो अपने आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ाइए। जिंदगी में चाहे कैसी भी परेशानियां, कैसी भी परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आए, उनका डटकर मुकाबला कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए।
0: जी, और बहनों, अपने मन को शांत करने के लिए आप गीत संगीत का सहारा भी ले सकती है।
1: जी बिल्कुल ले सकती हैं, और कल्पना मैं आपका इशारा समझ रही हूँ कि आप सुनवाना चाहती है हमारी बहनों के लिए एक प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल, ताकि हमारी बहनें भी बिल्कुल शांत रहे, उनका मन शांत रहे और वो सकारात्मक

0: मन को शांत करने के लिए आप गीत संगीत का सहारा भी ले सकती है।
1: जी बिल्कुल ले सकती हैं। और कल्पना, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ कि आप सुनवाना चाहती हैं हमारी बहनों के लिए एक प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल, ताकि हमारी बहनें भी बिल्कुल शांत रहे, उनका मन शांत रहे और वो सकारात्मक विचार अपने मन में ला सके।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ उनका तनाव भी कम हो।
0: जी तो आइए बहनों, मिलकर सुनते हैं ये गीत।
1: जी

0: देखिए सपना, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो खाने की थाली है ना, वो रंग बिरंगी होनी चाहिए,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना। उसमें हर तरह के रंग बिरंगे फल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है बेहद लाभकारी होते हैं, तो उसमें होने
1: जी
0: चाहिए। और
1: बिल्कुल,
0: हर फल ना अपने साथ रंग बिरंगे पोषक तत्व लेकर भी आते हैं।
1: जी
0: कोई विटामिन सी देता है, तो कोई आयरन देता है, कोई फाइबर, तो कोई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।
1: बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। और देखिए ना, फलों की बात आप कर रहे हैं और मौसम गर्मियों का है, और इस मौसम में ना देखिए बाजार रंग बिरंगे और रस से भरे फलों से सज जाते हैं।
0: जी
1: ये फल सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे शरीर को ठंडक, ऊर्जा और ज़रूरी जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो भी हमें प्रदान करते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो सपना, चलिए क्यों ना आज हम बहनों को जो है बताते हैं स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत रंग बिरंगे फलों के गुणों के बारे में, जो
1: जी
0: हमारे शरीर को अनेक स्वास्थ्य लाभ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: देखिए बहनों, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में खाए जाने वाले कुछ खास जो फल है वो कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
1: बिल्कुल कल्पना। और सबसे पहले हम अपनी बहनों को बताएंगे आम के बारे में।
0: जी
1: देखिए ना, आम जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है, आम में विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
0: जी
1: ये हमारी आंखों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो तरबूज की अगर हम बात करें, तो देखिए गर्मी में तरबूज शरीर में पानी की कमी को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें लगभग 90% पानी होता है, और साथ ही इसमें लाइकोपिन और विटामिन सी भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर को ताजगी देता है और हमें हाइड्रेट रखता है।
1: जी हाँ, और खरबूजा की अगर हम बात करें तो देखिए ना, खरबूजा भी गर्मियों का बेहद लोकप्रिय फल है। इसमें फाइबर, पोटेशियम और विटामिन ए मौजूद होता है, और ये शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है।
0: जी तो अब सपना बात करते हैं लीची की।
1: जी
0: देखिए आजकल जो है लीची देखने को मिलती है, फल जब हम भी खरीदते हैं तो मुंह में पानी भर आता है जब हम लीची को देखते
1: जी
0: हैं। तो ये स्वाद में मीठी होने के साथ साथ विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। ये शरीर को ऊर्जा देने और थकान दूर करने में भी मदद करती है।
1: जी हाँ, वहीं अगर पपीते की बात की जाए तो पपीता भी गर्मियों में काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसमें पपेन नामक एंजाइम होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। साथ ही इसमें विटामिन ए, सी और फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप इसे अपने डाइट में जो है ज़रूर शामिल करें। बहुत से फल और भी हैं हमारे पास, जिनके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं।
0: जी बिल्कुल। तो बहनों, बात अगर अनार की करें ना, तो देखिए अनार तो वैसे ही आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है, और डॉक्टर भी अनार खाने की सलाह देते हैं।

0: हैं।
1: जी हाँ, और केले की अगर बात की जाए तो केला भी देखिए हर मौसम में आसानी से मिल जाता है,
0: जी
1: लेकिन गर्मियों में ये तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। इसमें पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं।
0: जी बिल्कुल। और आड़ू की बात की जाए तो देखिए आड़ू में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और इसका सेवन भी हमें ज़रूर करना चाहिए बहनों। इसी तरह से देखिए आजकल जो सीजनल फ्रूट है ना, खुमानी, प्लम, जो कि गर्मियों में हमें भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, और इन्हें अगर हम खाते हैं तो ये भी हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि फल जो है बहनों सिर्फ हमारे शरीर को ताजगी ही नहीं देते बल्कि पानी की कमी से भी हमें बचाते हैं और शरीर को अंदर से स्वच्छ रखने में भी हमारी मदद करते हैं। और देखिए कल्पना, अगर हम ये कहें ना कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
0: जी बिल्कुल। और हमें इनका संतुलित मात्रा में नियमित रूप से सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा और पोषण मिलता रहे। और बहनों हमेशा याद रखिए कि जितने रंग हमारे जीवन में ज़रूरी है ना, उतने ही रंग हमारी थाली में भी होने चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने, इसलिए हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रंग बिरंगे फलों को ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जितनी रंगीन थाली उतनी खुशहाल सेहत।
0: जी तो आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराती रहिए, और फलों की मिठास की तरह अपनी ज़िंदगी में भी मिठास बनाए रखिए।
1: जी

0: देखिए कल्पना, गर्मियों का मौसम आते ही पसीना, धूल और उमस जैसी कई परेशानियां जो है वो बढ़ जाती है। और देखिए, इन्हीं में से एक आम लेकिन असहज समस्या है पैरों से आने वाली बदबू।
1: जी बिल्कुल सपना, देखिए कई बार हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, पूरी तरह तैयार होते हैं, लेकिन पैरों की बदबू हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है।
0: जी हाँ कल्पना, और ये सिर्फ ना साफ सफाई की कमी नहीं होती बल्कि कई बार गलत आदतों और देखभाल की कमी का परिणाम भी हो सकता है।
1: जी तो आज हम अपनी बहनों से बात करेंगे कि गर्मी के इस मौसम में पैरों की जो बदबू है ना, देखिए वो आती ही आती है, वो कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, सभी के
0: जी
1: पैरों से आती है। तो इससे बचा कैसे जा सके, क्या हम टिप्स अपना सकती हैं, उसी के
0: बिल्कुल
1: बारे में जो भी कुछ उपाय है वो हम अपनी बहनों के साथ साझा करेंगे।
0: बिल्कुल। देखिए ना बहनों, बात चाहे स्कूल जाने वाले बच्चों की हो या फिर ऑफिस में घंटों काम करने वाले लोगों की,
1: जी
0: लंबे समय तक जूते पहनने से क्या होता है कि पसीना आना जो है वो एक नॉर्मल सी बात है।
1: जी
0: तो ऐसे में हमें रोज़ाना पैरों को जो है साबुन और पानी से अच्छे से साफ़ करना है, अच्छे से हमें धोना है।
1: जी खासकर सपना देखिए, जब भी हम ऑफिस से आते हैं या फिर हम स्कूल से हमारे बच्चे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही शूज़ खोले उसी के बाद जुराबे निकालने के बाद सबसे पहले अपने पांव जो है वो पानी से ज़रूर धो लेने चाहिए।
0: जी
1: आधी बदबू तो वैसे ही निकल जाती है, पांव भी स्वच्छ हो जाते हैं और जो उनमें कीटाणु होते हैं ना वो भी मर जाते हैं।
0: बिल्कुल। इसके बाद पैरों को अच्छी तरह सुखाना भी देखिए उतना ही ज़रूरी है,
1: जी
0: खासकर उंगलियों के बीच की जो जगह होती है ना उन्हें सुखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है,
1: जी
0: क्योंकि नमी रहने से बैक्टीरिया और फंगस जो है वो तेज़ी से बढ़ जाते हैं और बदबू आना शुरू हो जाती है। अक्सर कल्पना ऐसा होता है कि सुबह के समय हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: जल्दी से नहाए, अपना खाना पैक किया और जल्दी जल्दी, यानी हमारे जो पैर होते हैं ना वो अच्छे से सूखे भी नहीं होते हैं।
1: जी
0: तो हमें क्या करना है कि पैरों को अच्छे से सुखाना है, उसके बाद ही आप मोजे पहने, उसके बाद ही आप जूते पहने, ताकि जो आपके पैरों में है वो स्मेल कम आए और फंगल जो इन्फेक्शन है उसे होने का खतरा भी कम रहे।
1: जी और सपना देखिए, दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ये ध्यान रखने वाली है कि गर्मियों के मौसम में साफ और सूती मोज़ों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
0: जी
1: जो कॉटन सॉक्स होती है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होती है,
0: बिल्कुल
1: फ़ायदेमंद भी होती है और वो जल्दी गंदी भी नहीं होती है और उसमें जल्दी से स्मेल भी नहीं आती है क्योंकि वो पसीना सोख लेती है इस
0: बिल्कुल,
1: तरह से, है
0: क्योंकि
1: ना।
0: वो सूती होती है कल्पना,
1: जी
0: और कई वो सिंथेटिक जैसे मोजे जो होते हैं ना वो ना
1: जी
0: तो पसीना सोखते हैं और स्मेल भी उसमें काफ़ी ज़्यादा आती है। तो बहनों, हो सके तो आप सूती मोजों का ही इस्तेमाल करें।
1: जी और गंदे और लंबे समय तक पहने गए जो मोज़े होते हैं ना उनसे भी बदबू बढ़ सकती है, इसलिए
0: जी
1: डेली जो है मोज़े बदलने का जो है आप आदत डाल सकते हैं और ज़्यादा देर तक जो है लंबे समय तक जैसे अगर आप मोज़े पहनते हैं ना तो उसमें बदबू आना लाजमी है।
0: जी
1: तो उसके लिए भी आप क्या करें कि खुले जो है वो शूज़ पहन सकती है, जैसे चप्पल का इस्तेमाल कर सकती हैं,
0: जी
1: आजकल तो
0: जी
1: गर्मी का मौसम है तो चप्पल का, या फिर जैसे ऐसे जूते भी पहन सकते हैं जिनसे हवा जो है अंदर बाहर आ जा सके।
0: बिल्कुल। और जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों की हम बात करें तो देखिए ना,
1: जी
0: चप्पल ले जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं
1: नहीं
0: होता,
1: है जी
0: तो वो दो जोड़ियां जूते भी अपने पास रख सकती हैं
1: जी
0: और उन्हें उनका आप अलग अलग यानी बदल बदल कर जो है इस्तेमाल कर सकती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइट और बंद जूते भी हमें नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इसमें भी ज़्यादा पसीना आता है।
0: बिल्कुल, अगर पैरों से ज़्यादा पसीना आता है तो आप हल्का फुट पाउडर और टेलकम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पैर सूखे रहते हैं और बदबू भी कम होती है।
1: जी और अगर बहनों हम घरेलू उपाय की बात करें ना तो क्या करना चाहिए कि गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर हमें पैरों को धोना चाहिए और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी होता है। और इसके अलावा गुलाब जल और भी इसमें जो है आप डाल सकती हैं जिससे
0: बिल्कुल
1: आप खुद को ताजगी जो है महसूस कर सकती हैं।
0: बिल्कुल, और गुलाब जल के साथ साथ हमारी बहनें थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकती है,
1: जी
0: जो पैर धोने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर रही हैं उसमें, तो इससे भी जो है आपके पैरों की जो बदबू है वो काफ़ी हद तक कम होगी।
1: जी
0: इसके अलावा सिरके का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, एक भाग

0: सिरके को दो भाग पानी में मिलाकर 30 मिनट तक पैरों को आपको भिगोए रखना है। ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है
1: जी। और इसके अलावा आप टीडी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी आप नहाने के पानी में जो है कुछ बूंदें डाल देंगी तो इससे क्या होगा कि आपके जो फंगल वाला इन्फेक्शन है उसको दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये एक एंटी फंगल होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहनों, ये छोटे छोटे जो हमने आपको टिप्स बताए हैं कि आप किस तरह से बदबू को दूर कर सकती हैं पाँव की, तो इन्हें ज़रूर अपनाइएगा। और जब आप ये अपनाएंगी तो आप खुद को सहज भी महसूस कर पाएंगी।
0: जी हाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 1:10 हुए हैं, डीजे पेश है कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, जहां हर धुन में है खुशी, हर गीत में है यादों का रंग और हर पल में है मनोरंजन का रंग। तो हो जाइए तैयार संगीत की उस शानदार दुनिया में खो जाने के लिए, जहां कभी पुराने गीत दिल को सुकून देंगे तो कभी नए गाने आपके कदम थिरकाने पर मजबूर कर देंगे। मस्ती फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें हैं उदित नारायण और शान की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद राज आनंद।

आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। जिंदगी की भागदौड़ में अगर दिल को चाहिए थोड़ा सुकून, थोड़ा जोश और ढेर सारी मस्ती, तो बस सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। विश्व आत्मा फिल्म का गीत सुनिए, जिसे गाया है साधना सरगम ने, बोल हैं आनंद बख्शी के, तर्ज दी है विजू शाह ने।

म्यूजिक मस्ती आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। साहिब फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें हैं बप्पी लहरी और एस जानकी की। बोल है अनजान के, तर्ज दी है बप्पी लहरी ने।

म्यूजिक मस्ती में हर गाना आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा, हर धुन दिल को छू जाएगी। रेस 3 फिल्म का गीत सुनी, आवाजें हैं दीप मणि और नेहा भसीन की, गीतकार हैं कुमार, संगीतकार मीत ब्रदर्स।

और भाई देखिए, हमें लगता है कि म्यूजिक मस्ती सुनते सुनते आप भी एकदम मस्त हो गए हैं। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का गीत सुनिए। आवाज़ें हैं नीति मोहन, विशाल डडलानी, सुखविंदर सिंह और साथियों की।

हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। पार्टनर फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें हैं वाजिद, लाबजन जुआ और स्नेहा पंत की। गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार साजिद वाजिद।

FM शिमला 103.7 MHz पर आप आनंद ले रहे हैं म्यूजिक मस्ती का। प्रीतम के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत। आवाजें हैं बेनीदयाल और शिफाली अल्वारेस की। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत गुड न्यूज़ फिल्म से है, जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ और साथियों ने।

संगीत वो एहसास है जो बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात समझा देता है, और जब साथ हो आपके पसंदीदा गीतों का तो हर पल बन जाता है और भी खास। गीतों और मस्ती से सजे इस खूबसूरत सफर में आज बस इतना ही। इसी तरह से हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए FM शिमला।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। ये समय है सब रंग कार्यक्रम का। रंगों से भरी इस खूबसूरत दुनिया में हर रंग अपने साथ एक नया एहसास लेकर आता है। कहीं खुशियों का रंग, कहीं यादों की मिठास, तो कहीं संगीत का जादू। इन्हीं खूबसूरत रंगों को समेटे हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद रंग।

संगीत की दुनिया में हर धुन का अपना अलग रंग होता है। कोई गीत हमें बीते पलों में ले जाता है तो कोई आने वाले कल के सपने दिखाता है। हर रंग का अपना ही एक रूप है। लीजिए सुनिए कैलाश खेर को।

0: सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है FM शिमला। 2:15 होने को हैं। दोपहर हिंदी समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता

0: ता नाइट आइडल से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं।

0: छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ NDPS अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिल के

दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला।
1: कहां ये यादियां थी तेरे मिलने से पहले।
0: खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी, लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम शिखरों के स्वर। पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक अलग ही सुकून छिपा होता है। ठंडी हवाएं, बादलों की चादर और दूर तक गूंजते मधुर स्वर मन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं शिखरों के स्वर। आवाज है कृतिका तन्वर की।

जैसे पहाड़ अपने ऊंचाइयों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वैसे ही संगीत भी जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। तो कुछ पल अपने लिए निकालिए और संगीत की इन वादियों में खो जाइए। लीजिए सुनिए ज्वाला प्रसाद शर्मा और अच्छर सिंह परमार को।

शिखरों के स्वर में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 3 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के विकास में पेंशनरों और कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को 4 दिन के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों को भी 4 दिन में निपटाने के लिए कहा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में OPS के लाभ जारी रखेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को IGMC शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख में मामले को आगे सूचीबद्ध किया जाएगा। मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा नेता व विधायक अनिल शर्मा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य मंडी को आधुनिक, सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विकसित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों में मंडी नगर निगम के विकास की ठोस कार्य योजना है। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने जहां 4 नगर निगमों सोलन, धर्मशाला, पालमपुर

0: व मंडी के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने बताया कि चारों नगर निगमों के कुल 64 वार्डों में भाजपा ने कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस को कई वार्डों में उम्मीदवार खोजने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉ सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप और डॉ राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर पार्टी द्वारा आयोजित बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। इस बीच अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हुए नई योजनाएं लाकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
1: मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने विश्वास जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम सोलन के लिए जो बजट की कोई कमी भी जो है नहीं आने दी जाएगी और जो भविष्य की जो योजनाएं हैं और जो भी वार्ड की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बड़े योग्य उम्मीदवारों को उतारा गया है। और मैं नगर निगम सोलन प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील भी करता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उन्हें जिताएं।
0: राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर आज शिमला में सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान निगम की चालक परिचालक यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर आज कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा तो प्रदेश में बसें खड़ी कर दी जाएंगी। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि बीते दिन हड़ताल की चेतावनी देने के बाद निगम प्रबंधन ने आनन फानन में 3 डिपों के कर्मचारियों को वेतन जारी किया, जबकि बाकी 27 डिपों के कर्मचारी अभी भी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। यूनियन ने कहा है कि अगर अगले महीने से कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करते हुए बस सेवाएं ठप करेंगे।
2: हमने जिस डिपो में जिन 26-27 डिपुओं में सैलरी नहीं मिली है, हमने उनको क्लियर आदेश दिए है कि जब तक आपको पैसे का मैसेज नहीं आता है, आप इनकी लिमिट की बात इनसे ना सुने, आप बैंक की बात इनसे ना करें, वो इनका काम है। अगर ये बोलेंगे कि बैंक को भेज दिया, चेतन ना डाले, तो हम तो इनके पीछे घूमने को रहेंगे। हमने क्लियर आदेश दिया कि 10 बजे आपने गेट मीटिंग करनी और गाड़ियां खड़ी करनी है। अगर मैसेज आता है तो गाड़ियां चलाओ, नहीं आता है तो हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है चिंतन शिविर साझा दृष्टिकोण के जरिए भारत में खेलों के भविष्य को दिशा देना। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
4: चिंतन शिविरों का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त करने के बाद भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि ये आज भारतीय खेल जगत की सबसे सामयिक और असरदार पहलों में से एक है। हम अपने राष्ट्र की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, एक ऐसा मोड़ जहां इरादा, निवेश और प्रेरणा अभूतपूर्व रूप से एक साथ मिल रहे हैं। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में खेल हाशिए से मुख्य धारा में आ गया है। इस महत्व के प्रति भी साफ तौर पर राष्ट्रीय जागरूकता देखी जा सकती है, न केवल एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि के रूप में बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव के साधन के रूप में भी। आज हम एक विशाल और विविध तंत्र देख रहे हैं जहां राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन, निगम, संघ और जमीनी स्तर के संस्थान सभी मिलकर खेलों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। चिंतन शिविर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है। खेल अपने आप में कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिनमें विनिर्माण, मनोरंजन,

0: फिटनेस, मीडिया और शिक्षा शामिल है। ये शिविर इन सभी क्षेत्रों को एक साथ लाने में मदद करता है, जिससे एक साझा दृष्टिकोण बनता है जो दीर्घकालिक सफलता के लिए बेहद जरूरी है। ये देश के सामूहिक दृष्टिकोण को सामने लाता है और साथ ही विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करता है, जिससे अनुकरण और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। ये शिविर महज एक सम्मेलन से कहीं बढ़कर एक शिक्षण तंत्र है। ये इसमें शामिल होने वाले लोगों को विचारों का आदान प्रदान करने, चुनौतियों को समझने और मिलकर समाधान विकसित करने का अवसर देता है। ये एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में भी काम करता है, सफलता की तमाम कहानियों को सामने लाता है और इस विचार को और पुख्ता करता है कि भारत में खेल महज विशिष्ट पदकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भागीदारी, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण भी शामिल है। फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन और साइकिल प्रतियोगिताओं जैसी सामुदायिक गतिविधियों ने खेल के प्रति हमारे नजरिए को एक नया रूप दिया है। आज के वक्त में सभी के लिए खेल के साथ साथ उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता पर जोर है। पदक जीतने की आकांक्षाएं और व्यापक भागीदारी अब अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि वे एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। श्रीनगर में शिविर का आयोजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस शहर की शांत सुंदरता न केवल खेलों की विचारधारा के लिए एक मनोरम पृष्ठभूमि प्रदान करती है, बल्कि शांत चिंतन का भाव भी देती है, जो सार्थक संवाद के लिए बेहद जरूरी है। इस चिंतन शिविर का एक अहम केंद्र बिंदु श्रीनगर खेल संकल्प को अपनाना था। यह संकल्प महज एक आशय का दस्तावेज नहीं, बल्कि ये एक एकीकृत ढांचा है जो भारतीय खेल जगत के सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को एक साथ बांधता है। साझा लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके ये एक ऐसा रोड मैप तैयार करता है जो विखंडन के बजाय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। श्रीनगर खेल संकल्प की असली ताकत विभिन्न भागीदारों, सरकारों, संघों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक मंच पर लाने की क्षमता में निहित है। ये इस विचारधारा को और पुख्ता करता है कि भारत के खेल जगत का उत्थान अलग अलग प्रयासों से नहीं हो सकता, इसके बजाय इसे एक समन्वित सहयोगात्मक दृष्टिकोण से संचालित किया जाना चाहिए, जहां संसाधनों, ज्ञान और विशेषज्ञता को एक साथ लाया जाए। भारत को 2036 तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल होने की अपनी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए ये समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने के लिए न केवल प्रतिभा की जरूरत होती है, बल्कि एक सुचारू तंत्र की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जमीनी स्तर पर पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, उत्कृष्ट कोचिंग, प्रतिस्पर्धा का अनुभव और निरंतर वित्तीय व संस्थागत समर्थन शामिल है।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। लीजिए पेश है ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक, जहां हर गीत आपको ले जाएगा सुनहरे दौर की खूबसूरत यादों में। वो दौर जब गीतों में मिठास थी, शब्दों में एहसास था और धुनों में दिल को छू लेने वाला जादू। आगाज करते हैं रफी साहब के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है हीर रांझा।

पुराने गीत सिर्फ गाने नहीं होते, ये वो यादें होते हैं जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। कभी किसी अपने की याद दिलाते हैं तो कभी जिंदगी के सुनहरे पलों को फिर से ताज़ा कर देते हैं। लीजिए सुनिए द ट्रेन फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बिना बुलाए ही दिल के करीब आ जाती हैं, और जब साथ में पुराने गीत हों तो हर याद और भी खूबसूरत बन जाती है। पुराने नगमों की यही खासियत है दोस्तों कि ये हमें उन पलों से फिर मिला देते हैं जो शायद वक्त के साथ कहीं पीछे छूट गए हों। महबूब की मेहंदी, इस फिल्म में लीजिए सुनिए रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सभी युवा साथियों को नमस्कार। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम युववाणी में मैं प्रथा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कभी कभी हम जिंदगी को अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, कुछ ख्वाब सजाते हैं, कुछ रास्ते चुनते हैं, लेकिन वक्त के साथ समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ हमारी योजनाओं का नाम नहीं है। कई बार वो हमें वहाँ ले आती है जहाँ जाने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आज हम बात करेंगे ख्वाबों की दहलीज और हकीकत के आसमां की, एक ऐसा सफ़र जहां सपने बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और उन बदलते रास्तों के साथ हमारी सोच, हमारी उम्मीदें और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो सिर्फ एक चाहत नहीं बल्कि आपकी पहचान बन गया हो, और जब वो सपना पूरा ना हुआ हो तो क्या कभी ऐसा लगा कि जैसे आपका एक हिस्सा अधूरा रह गया हो? सपने शायद इसलिए खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो हमें जीने की वजह देते हैं, या यूं कहिए कि एक लौती वो चीज़ है जो पूरी तरह से सिर्फ हमारी होती है। बचपन में हमारे सपनों की कोई सरहद नहीं होती थी। कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई एस्ट्रोनॉट, और कोई तो चांद पर घर बनाने के सपने तक देखता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हकीकत ने हमें सिखाया कि हर सपना पूरा हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी हमें मजबूत बना जाते हैं और ज़िंदगी को नए मायने दे जाते हैं। तो बस ये इसी एहसास को बयां करते हैं और सुनते हैं हमारा आज का पहला गीत।

दोस्तों, सपने देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सपने ही वो नींव हैं जिन पर बड़े बड़े बदलाव और आविष्कार खड़े होते हैं। अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब का सपना ना देखा होता या राइट ब्रदर्स ने उड़ान की कल्पना ना की होती तो शायद दुनिया आज उतनी आगे ना होती। महत्वाकांक्षाएँ हमें मकसद देती है, लेकिन सिर्फ जागती आँखों से ख्वाब देखना काफ़ी नहीं है। जब हम हकीकत के मैदान में उतरते हैं तब पता चलता है कि वहाँ हवाओं का रुख हमेशा हमारे हक में नहीं होता। कभी कभी हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं, पर फिर भी हकीकत का चेहरा कुछ और ही निकलता है। अचानक ज़िंदगी का बना बनाया प्लान बिखर जाता है, रातों रात गोल्स बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मैं किसी लायक ही नहीं हूँ? ये अनवर्दी होने का एहसास इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हकीकत जब सपनों से अलग होती है तो इंसान जाग कर भी एक अजीब सी बेचैनी में डूबा रहता है। इसी बेचैनी के सवालों को बयां करता हमारी ये अगली धुन।

आकाशवाणी FM शिमला पर आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम। हमारी चर्चा का विषय ख्वाबों की दहलीज और हकीकत का आसमां है। साथियों, जिंदगी का सफ़र अनिश्चित है, ये तो आप जानते ही हैं। इस सफ़र में चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है जब हम खुद पर शक करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर कहीं पहुँच ही नहीं रहे। कभी तो यूँ लगता है कि चल रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है ये खुद भी नहीं पता। क्या आपने भी कभी डायरेक्शन लेस महसूस किया है? हमारी ज़िंदगी उस कागज़ की नन्ही सी नाव की तरह है जिसे हम बचपन में बारिश के पानी में छोड़ दिया करते थे। उसे नहीं पता था आगे कोई रुकावट है या खुला रास्ता, वो बस पानी के वेग के साथ बहती चली गई। हम बड़े होकर अक्सर हालात को कंट्रोल करने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम सफ़र का मज़ा लेना ही भूल जाते हैं। कभी कभी अपनी पतवार को ढीली छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। खुद को वक्त की लहरों के हवाले कर देना और मान लेना कि जो हो रहा है वो जीवन के एक बड़े मकसद का हिस्सा है, यही असली शांति है। जब हम अपनी जिद छोड़कर ज़िंदगी के इस फ्लो को स्वीकार कर लेते हैं तब हर लहर हमें एक नया अनुभव देने लगती है। आइए इसी समर्पण को महसूस करते हैं इस अगले गीत के साथ।

दोस्तों, हम अक्सर रोते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें नहीं मिली, लेकिन सच तो ये है कि हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने चाहा है, जबकि ईश्वर या नियति वो जानती है जिसकी हमें ज़रूरत है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये एक गहरा जीवन दर्शन है। अगर कोई ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो शायद वो रास्ता आपको किसी और बेहतर मंजिल की तरफ ले जाने के लिए बंद हुआ था। ख्वाब हमें लड़ने का हौसला देते हैं, हमें एम्बिशियस बनाते हैं, लेकिन हकीकत हमें शांति और हमारा किनारा देती है। ज़िंदगी हमें वो नहीं बनाती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो बनाती है जिसकी हमें सच में बहुत ज़रूरत होती है। अपनी हकीकत को गले लगाइए, क्योंकि जो हुआ वो होना ही था, और जो होगा वो आपकी भलाई के लिए ही होगा। किनारे की तलाश सबको होती है। हम सब चाहते हैं कि बस एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाए जहाँ हमारी खोज खत्म हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो किनारा सिर्फ अंत नहीं होगा, बल्कि वो एक नई शुरुआत भी हो सकती है? हकीकत हमें ज़मीन पर पैर टिकाना सिखाती है। जब हम अपनी ज़िद छोड़कर कुदरत के फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। तो चलिए इसी किनारे की तलाश समझते हैं हमारे इस अगले गीत के साथ।

दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम लोकल बस में आराम से बैठ जाते हैं बिना ये जाने कि ड्राइवर कौन है। हम फ्लाइट में सफ़र करते हुए सो भी जाते हैं बिना पायलट को देखे, तो फिर अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर भरोसा करने में हमें इतना डर क्यों लगता है? आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि हम कितने आगे आ चुके हैं। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, कुछ रास्ते बदल गए और कुछ नए बन गए। लेकिन सच तो ये है कि हर अनुभव ने हमें थोड़ा थोड़ा बदल दिया है, और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि हम हर दिन पहले से अलग होते जाते हैं। अगर एक छोटे से उदाहरण में कहूँ तो 10 साल की प्रथा ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर युववाणी जैसे कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेगी। उस समय सपने छोटे थे लेकिन उम्मीदें तो बड़ी थीं। कुछ सपने पूरे नहीं हुए, फिर भी कभी आगे बढ़ने की हिम्मत कम नहीं हुई। शायद समय के साथ यही समझ आता है कि हर चीज़ का होना ही सफलता नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ना भी एक जीत ही है। तो ये ज़िंदगी एक पहेली है, आप जानते हैं, तो इसी जिंदगानी की खूबसूरत पहेली को समझते हैं हमारे आज के इस आखिरी गीत के साथ।

साथियों, वक्त हो चला है इस सफ़र को विराम देने का। आशा करती हूँ कि सपनों और हकीकत के इस छोटे पर महत्वपूर्ण दायरे को आप ज़रूर समझेंगे। कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं हर सपना अपनी मंजिल पा ले, कुछ अधूरे ख्वाब भी ज़िंदगी को नया मोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं हर सपना अपनी मंजिल पा ले, कुछ अधूरे ख्वाब भी ज़िंदगी को नया मोड़ देते हैं। जो नहीं मिला मलाल उसका क्या करना दोस्तों, अक्सर बंद दरवाजे ही नई राहों की तरफ मोड़ देते हैं। इसलिए अपने ख्वाबों को भी जीते रहिए और हकीकत को भी अपनाते रहिए, क्योंकि दोनों मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। मैं प्रथा अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ख्याल और नई उमंग के साथ। युवाणी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
0: FM शिमला पर अब समय है फिल्म संगीत का। जीत फिल्म का ये गीत है, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

दिल है तुम्हारा। इस फिल्म में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को, बोल हैं समीर के, तर्ज दी है नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। अपनी रेडियो हम सफर रीना वर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 4:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। आइए इस श्रृंखला में सबसे पहले सुनते हैं स्पीति कार्यक्रम।

जुले पीतिमी मछांगमाला ई आकाशवाणी शिमला इनु मो छेरिंग पालमु थेरिंग की डैग्रीम गोजुग नाइन थेरिंग मनशोला मोबाइल तकनीकी की लाभ रंग हानि रंग शिक्षा की महत्व रंग ग्याकर की लोन यंग अतिनपुला लु नैनपुनपु नैन मनशोला मोबाइल तकनीकी की लाभ रंग हानि कोला सुनाइन दांग थेरिंग की कालवाला विज्ञान रंग तकनीकी कलवाइनु अति कि नांगदू मोबाइल ते चिकेनु मोबाइल की लाभ चिकपु तंगना ते माना अजा गंगबू की मेजे की खाक छिनमु हिस्सा चिक हेनु मोबाइल फोन सु अजी जिमनिंगला ची अन्न लहा थारंगबु न अन्न अतिर सेकेंड ला डुबरा सका यंग दीला ये लाभना छोंग तनमु बैंकिंग ऑनलाइन चलाग्योना यंग ची अन्न मोबाइल ला यंग मोबाइल सु लाल नमू शूजी ओका मोबाइल तकनीकी की

मीनांग फंतोक ची ची युवा से ना गंशोला दिकी फंतोक ची ते संचार की सुविधा से ना यंग थांगबू की मिया लोन कोचर मीनांग में दिशा कोन रा यंग मोबाइल सो आया लंचिक पाला लाभ तंग ना योगा ची लाभ वीडियो कॉल सो आया थार मूला ते तंग मिया ला लंचिक पाला और जिमे याई दौरो कौन चोरे योगा निपाते और यंग ची युवा से ना मोबाइल ले मीना मिति फंतोक यंग होया कि मिजेला पुचियो का निपाते ची हुआ सेना शिक्षा की सहायता सेना ये लाभना पेचा सिलना दंग थे की टू या मोबाइल की माध्यम सु ऑनलाइन ये लाभ चा रंग इंटरनेट या मीना मिति किताब रंग वीडियो चाहे खोजाया अति उपयोग मीना मिति चुआ ची चला यो ना लिए लाभना की दी मोबाइल नंगना योका यंग ओई कोविड 19 की तुझो से ना मोबाइल की लाभ नाते ये लाभ कन चोरे या स्कूल तो ये लाभ कन चोरे छुआ यंग ओई टू या ऑनलाइन ये लाभ कन चोरे कक्षाएं दे तंग चोरे चिकपा छुआ सुबाते जानकारी प्राप्त से ना ची नुआ से ना मोबाइल की सु यंग ओई गंगबुला जिमलिंग नांग दो ची लोन यो ना अति ते निंजा रंग अति ला नाम रे ओया ये नाम ताना ये लाभ ना यंग सेना विज्ञान ची और राजनीति की यंग ची जूह की नाजा और ना ती मोबाइल नंग दो होगा सेका जी पाते ची उन्हों छोंग रंग बैंकिंग की ची सुविधा और ना ती मोबाइल सो ला लमुचू ही होगा सेका यंग और थारिंग बोरु टू या लमूल कुन्ना थालो या ऑनलाइन लो चोक कुर्तंग ना होगा यंग तुझे ला यंग जी और चोक ला लमुचाई मोबाइल चाई और लंचिक पाला कुन्ना का जी पाते यंग अतीत यंग चीन वासे ना मोबाइल तन्मु ताना यंग लुन्यन बुरे न्यन ना सिलेमा ताना गेम से ना सोशल मीडिया की उपयोग ते मिनांग में थी यान दालो या पूछियो का यान दी की यहाँ पुला ची हुआ से ना यान तकनीकी सुविधा यंग मीनांग में थी और ना यंग ची या तो फिर ना नाजा दे दुर्घटना या तो जोतला और तेरु लेपचा यंग मोबाइल चाहिए ला लमु चाहिए लेपना होगा दी ते मोबाइल की फंतोक इनो थे यंग दी की नुकसान ची हुआ सन नुकसान का मीना में थी होगा ग्या छी नुकसान या ती चीनू ग्या छी मोइनू यंग मोबाइल की लत दांग थे टू याला ख्योक तो ना चू याला मोबाइल की लत ते मीना में थी पूछी होगा खंजाया घंटों मोबाइल का संग ताशी तुझे ते मीना में थी बर्बाद चुआ ये लाभ जागा याकु दी ते याकु माँ यंग निपाते चीनू नजा मोबाइल ला मीना में थी यंग दी जूम का ची ते मीक का खराब होंडा घोसुगजर यंग नी पाते नी का न्यून दिमाग की तनाव की समस्या मीना मिट्टी पूछियो का यंग मोबाइल ला ताशी मिया जूहू की गतिविधियाँ से ना यहाँ जूहू लगुलना में था यहाँ तेरु देते ना योगा सुन पाते चीनुआ से ना सोशल मीडिया की गलत प्रभाव से ना मिया मोबाइल की गलत उपयोग का मीना में थी फेंका अफवाहें फैलाई चुआ जिमे अल परेशान चुआ दांग तेरिया ऑनलाइन क्राइम का मीना में थी पूछियो का यहाँ गलत गलत मैसेज आओ या लवाई में दो अति थे आ पाते चीनुआ से परिवार जिमे त्याला यहाँ पुला देना में था सो यहाँ मी ऋषि तोले दोनों मोबाइल होती रंग रंग सा मोबाइल जुम जी दे तंगा हो या टू या न्या वाला लाभ में था जिमे न्या वाला मे पे हो या मोबाइल ला वेस्ते का होती थे याकपू माँ हो या देते मीनांग में थे और पर जिमे त्याला खराब चुआ की लिहा इनु आ पाते चीन बस है ना यहाँ हो या दे दी साइबर क्राइम से ना चीनो मोबाइल सु इंटरनेट की मीना में ती उपयोग थे और अल याकू माँ ऑनलाइन धोखाधड़ी से ना यहाँ और यहाँ में दो दी जो मूल कुर्तों मुझे उसी होती का मीना में ती पूछियो का यंग और कुन माँ की लेहा का मांग दो पूछियो का दी थे मीना में ती याकू माँ से यंग मिया मॉडल चलाई चू से ना यहाँ तो मोबाइल ताई ते दुर्घटना की कारण चिकीन हो मिया मोबाइल सूखों जाया कि लेहा यंग जिम्मेदारी आला जेची होगा मोबाइल तकनीकी की उपयोग ते मीना में ती समलो ये तंग जाए कि लेहा इनो मोबाइल ते मीना में ती याकू चाय यंग जिम दिमु चाय उपयोग है ना टू याला ते ता गुशा ची की पैदुआ खों जाए मोबाइल लच्ची चादुआ ते ने मोबाइल की लेहा खाक छिन मु का योगा से यहाँ ती थुजुत ते यहाँ पूला पैचा मोबाइल ते बर्बाद ओई मिन जिमे यार बर्बाद का चुआ थे नियान ती ते यंग याकपू का खो ती ते औरंग ला निर्भर चुआ या चम मोबाइल ला इस्तेमाल चुनाई हो दी ते मोबाइल की फंतो रंग दी के हानि या क्यों ला था आने डोलमा की लुन्यन बुझी न्यंदा सा

आने दोर्जे वांगमो की लुनियन पु गाबला था ग्याका की लुन हौजी प्रदेश की उच्च न्यायालय सु शिमला ना योकन कमला नेहरू अस्पताल ला आईजीएमसी शिमला ला शिफ्ट पेचा पीला रोक लगाई चुआ सा दी मामला नांग दो हौजी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरुमीत सिंह न्यामपुला न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी सु दी फैसला निंदा सका यांग राज्य पथ परिवर निगम की लिहा फेकन या मूल माथावती सु तिरिंग शिमला की निगम प्रबंधक फिला नारेबाजी चुआ सका दी सेना यहाँ मोटल टुलकन रंग यहाँ कोई परिचालक यहाँ पोला

कमला नेहरू अस्पताल के IGM सीधा शिफ्ट करने पर रोक लाए गए। इस मामले दा दायर की गई एक ही जनहित याचिका सुनाई कर दे उच्च न्यायालय रे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगीरी खंडपीठा दा फैसला सुनाया। अदालते इतरे बारे दा विस्तृत जवाब मांगा हो और अगली सुनवाई री तरीका दा मामले के आगू सूचीबद्ध किया जाना। हाई कोर्ट डेंटल कॉलेज रे प्रस्ताव पांदे भी रोक लाए दे। प्रदेशों दा नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय साथी जो पंचायती संस्थाओं रे चुनाव इते कालो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। भाजपा जेती चौ नगर निगम सोलन धर्मशाला पालमपुर और मंडी रे चुनाव रे तई अपना संकल्प पत्र जारी किया। तेथी कांग्रेस है सोलन नगर निगम रे तई के अपना घोषणा पत्र जारी किया। सो दुई ही पार्टी है अपने अपने प्रत्याशी रे पक्षा दा चुनाव प्रचार तेज कर दिया। मारी अगली खबर सो राज्यपाल कविंदर गुप्ता ही जो शिमले रे लोक भवना दा यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल द्वारा आयोजित जो तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान सो तेतेरा शुभारंभ किया। यह अभियान हिमाचल रे सभी 12 जिले दा चलाया जाना। जनी रा उद्देश्य नए छोटू और आम मानु के तंबाकू रह से उन्होंने जो बुरे प्रभाव तेतेरी तई जागरूक करे रो नशा मुक्त और स्वस्थ समाज बनावना। सो राज्यपाल संगठन री इस पहल री सराहना कर दे बोला कि समाज दा बढ़ती नशे री प्रवृत्ति के प्रभावी ढंगा का निपटने री तई नए छोटू रा जागरूकता बहुत जरूरी। तीने बोला कि स्वस्थ और जिम्मेदार समाज बनाने री तई नए छोटू री सक्रिय भागीदारी और सामूहिक सामाजिक प्रयास खास भूमिका निभाओ। ये तो थे खबरसार। एबे लायक राम शर्मा री आवाज़ दा एक लोकगीत।

ये सुना तुम्हें बेके बढ़िया लोकगीत। और इस लोकगीता साथी मारे आज के कार्यक्रम रहा पे वक्त भी हुए लागा मुलाकातों ने आने वाले शुक्र तो ते के मांखे दे इजाजत सभी सुनने वाले के राम राम।

किनोरिंग भाई सही नमस्कार जू आकाशवाणी शिमला केंद्र तो जू प्रोग्राम कल्पारंग कुल्लोरी ले केंद्रों ली रिली हचो भाई सेग सुदेश नेगी पेश लानो तो किनोरिंग प्रोग्राम दो भाई सही राजी खुशी तो चाहे ग आशा लन तो किनाचो की राजी खुशी नहीं थी भाई सही तो रो प्रोग्रामो दम दम की थाका दारोंची साथ ही परदेशी खबर सारी लिखाशी तो भाई सही तो रो बत्याशी छांग नुकुमो हाला संस्कार शेन ग्यामिक तो नुकुमो हाला रूम से संस्कार विकसित लानिम ग्यामिक बैसे हर अमा बुआ ग्याज की दोगो नु छांगा हुशीमा दम नीमा जीव नुकुमो ओम स्तन नारिंगो जू दो सिर्फ शिक्षा सी पूरा मलहंसनी हो दोरंग एक एक ख्याचता छांगा नुकुमो दम संस्कार ली नीज ग्यामिक दोगी तो दम म्यू रोंगसिया हचित नहीं हो वैसे संस्कारी छंगानु दम म्यू पहचान निज नहीं हो छंगा ईत स्पिन माटे ऊँ खतर निज नहीं हो दोगनु हाला वातावरण पोरिया तो हो दो ही दोगनु विचार रंग व्यवहार हचित नहीं हो दो तंगे छंगानु दम सरकार संस्कार रनी हर पेरंगु जरूरी निज नहीं हो वैसे चेको ओमस्ता जो सोमजन ग्यामिक की छंग हाल्या सीख्या छित्री हूँ अगर किमु कुमो तेग मीगा सम्मान बतांगा बत्याशिमा सच्चाई बत्याशिमा अनुशासन होनीमा आई देनु मदद लन्नु आदत नीमा दोगी छंगा हो दे आदत अपने आचनी हो संस्कार रन्नु शुरुआत वक किमोची निजनी हो छंगनु जी सोची सच्चाई बतेसमु इत्ता आदत शन ग्यामिक दंगची सोम सरशीस अमा बोआरंग तेगेनु सम्मान लन्नु सिख्याम ग्यामिक हालिया नमस्ते।

धन्यवाद इसके जो जिगी जिग शब्द ली धम संस्कारे नू हिस्सा निजनी हो। अगर छंगा वामंग तशिमा तोगा नू तोंगमु का बजाय बेनंग सोमजेम ग्यामी अगर तोंगमा तंगमा दोगा दो उल्टा बैंक ठस दो जाली बाते आशुमु सीखेस नहीं हो। जुगरंग एक एक खेच था छंगा नू जिम्मेदारी गाली सीखेम ग्यामी की मुकुमो कमंगा समय देन हुशुमु की मुकुमो तेगेन दंग कमंग उन्नी किमो कमंग बैरंग कमंग जुचोई बतांगा छांगानुकुमो आत्मनिर्भरता रंग अनुशासन पैदा लंसनियो। वैसे ही तुलिंगशों मोबाइल रंग टीवी प्रभाव छागंदन वाली तेजीस बोधे दुनियो इधन की अमाबुआ छांगा करप्शिमा ख्याजता चोटोप दोग मोबाइल तो आरंधनियो ताकि छांगा असे माता चिरंगो जो वाल दो वामंग बतंग निजनी हो जूस मोबाइलु सीधा स्क्रीन दो छानु मिगंदेन असर पजनी हो। दो तंग इस ख्याचता अमाबो आनु ग्यामिक की छंगा रंग एके समय बित्याम ग्यामिक दोगा रंग पत्याशिमी दम दम कोथागा सुनियामिक नैतिक शिक्षा से किताबेनु हुशिम शेनिक खासकर की मुकुमो बुजुर्ग पेरंगा निमा अपी तेते लोतेस दोक्ता हुन छांगानु संस्कारे नु तांगेस चुएकुतेक पाठशाला ता होदय निज नहीं हो मनिया दे। वैसे दोगोनु तजुर्बा रंग जीवनु सीखता छांगानु अपी तेतेन दंगची पोरेस नहीं हो। साथ ही साथ ख्याचता छांगानु आय देन देन दयालनु दोगानु कामाओ साथ रनु सम्मान लनु आदत शन ग्यामी जरूरत मंदेनु सहायता लानी मिशनिक कुदरत रंग तू सेम सतुक सेम चंदंग पेनंग लानिक चुचुई दम संस्कारे छानु कुमो नीज गैमिंग नियो। वैसे इधर के चल्स की अम्या ते खचीज तो अनिगा ने तो रिंगो चल्स नियो दो खोए मनीज नियो जी चोची छानु दम जुचुई दम संस्कारे रन्नन नीमा तंगमा तेगो दोगो नु लोनु जरूरत मरीज नहीं हो आने गई दोक हुशार अचित मरे। वैसे बतांगता हुए नीच की छंगा देशु भविष्य रू मगर खुशी तंगतंगी तालिम सी हती छंगा महान महाचित नहीं हो जीवन सफलता रंग एक एक दम संस्कार ली होते ही जरूरी नीच नहीं हो। तो रुकतु समय कशा ताओ की छंगा दंग चोई हुन सुख सुविधा का तो नहीं हो रुपया पैसा उता बोधी की दंग खर्च लनु पेरंगा मगर दोगन दंग ब्यावर रंग संस्कारे नु कमी दोक टाइम बदो नहीं हो जो बोदले दो जीवन नु चेलियु कुमो जरूरत दू की छांगा नु दम संस्कारे देन ध्यान शन नु जरूरत नहीं हो। छांगा नु मोबाइल का बोधी दम किताबे हुशुमु शेनिक मानिमा दो पूरा समय तोलिंगशुंग ख्याजता मोबाइल देनी तो दो नहीं हो छांगानु तनुवान जुर्यामु काबोदी जरूरी दू की दोगोनु संस्कारी जुर्यामु। बैसे दोक बोधी थ पतंग जुता थोके सांजा पतंग कच तरे मा ईद गिथंग ले रोंचे रोंची जो गिथंग।

Vaisi kina gitang ta ramjishesh kalakar to gesh bagdevi negi ji kashta vaisi patyashi un kashanu jivan ku ju sansanda ju bachat lanu nema tangma hanna tangma do yumsu ittama kashanu jivan ku dakchit niyo do itwal tek sahara li dakchit niyo vaisi khacha kashanu jivan ku harmi sukangrang dambabishya ग्याजनियो कशा चोईमी ख्याचता ग्याज की कशानु पेरंग तेरंग ली मुसीबतु बेरंग तोगतोगोनु थची परेशानी मदे मारियो वैसे लेकिन जू दोगी संभव नितोनियो कशा अमराओं आमदनी कुमो तोक सांसांदा बचत लनु आदत शेन्ना दोक इत कहावत ली तोचनियो दोखुन बूंद बूंद गड़ा पंग बंगसरियो होजे जिगित जिगित बचत ईदियार दोक इत तेग सहारा आली हजित नियो वैसे तुरक्सु समय कुमो महंगाई लगातार ली वाली दोक बोध्य धोनियो शिक्षा दियो म्यू स्वास्थ्य रंग त्यारोचु जो हन जरूरते खर्चा ओमी का दो हन कई गुना बोधी हचो भी होनियो होए गु कुमो ख्याचता अगर कशा समय देन बचत लन्नु आदत मशीना दोक भविष्य कई दोखुन कठिन आएगा बनली सुकैसनी हो वैसे खेचता जिगित जिगित चू हुन बचत लन्नू।

मतलब सिर्फ रुपये जमा लनी गी मनी बल्कि यू इत म्यू दम आदत रंग समझदारियों प्रतीक निजमियों। हत्यामी तोक द्यारो गटो गटो रुपया बोचा तो गोलू आखिरियो ई दम रकमा चितियों। हुजी रुपया तोक ठट्टो दा न दा दियो म्यू इलाजो दियो आई छंगनु पढ़ाई दियो या तो आई थदली जरूरत नु बेरंग कमंग बजनियो। होदी छंगनु ली रुपया बचत लनु सिख्याम ग्यामी छंगनु रुपया पंग गुल्लको शनु आदत छन ग्यामी। हुजू आदत तोगनु भविष्य तंगे जिम्मेदार जुरियात नियो। वैसे छंगनु ली बचत लनु आदत छन्ना दोगी दोगा ख्याजता रुपयाओं की मत समझनियो। जिगिस बचत कशानु आत्मनिर्भर जुरिया चितनियो। अगर मराओ दंग दो तामा ताता नीमा अचानक दोगठली मुसीबत बनना आई दिन दंग झुकेन्नु जरूरत में पड़ेजनियो। सरकारली ख्याजता म्यू बचत तंगे जागरूक लनोनियो। हलिया डाकघर योजना का देश के बैंक योजना का देश के जूचो योजना का नु जिगित बचत नु बढ़ावा रनोनी हो। ग्रामीण जगह नोली मी हुन बचतु महत्व बोली समझा दोनी हो। वैसे कई मी का चल्स की मनो इनकम कुमो दो खाला बोचे अशोरी मो मगर बोचे हमु तरीका मनो इनकम का बोधी दोक आदत नीच नहीं हो। अगर दोक फालतू खर्चा का मलनन बोचे हम नहीं मा दोग जो आसानी इसलिए बोचन सो कैस नहीं हो। मोनऊ कुमो साथी ख्याचता म्यू आत्मविश्वास ली बोधे दो बीस नहीं हो। वैसे ही बचत लनिक सिर्फ मी पंगी मानी बल्कि देशु प्रगति रंग तयसली खास नीस नहीं हो। अगर मी बचत लन्ना होदो दन बैंके रंग योजना अनुमाध्यम देशु विकास कमानोली उपयोग खचित नहीं हो। वैसे ही तोरक चू समय सुख सब सुविधा का नु समय नहीं हो। बाजारे नु कुमो ख्याचता दियारो न्यूक न्यूक चीजें बस दोपंग जोगमु खुशी देश मी पंग दोहन कई बेरंग दो कशा जरूरत काली बोदी खर्च लाजनी हो। तोलिंगशोंग तक ख्याचता ऑनलाइन जमाना मी बोदी दोखुन ख्याचता ऑनलाइन ही खरीदारी गलानो दम दम के तंगे रंग दो म्यूजियो मशकोस दो खर्च लानो बीस मुलुक सौदा लंदन निपी लिस्ट ख्यामा दो मुलुक रुपया खर्चा जिसनी होई कुकुमो ख्याचता जिगिस बचत सी इतेक सहारा हचित नहीं हो। वैसे दोगजू जिगिस जिगित बचते भविष्य इतेक ताकत नीच नहीं हो। तोरक तूसा में ख्याचता टोदा नादाली बोधी बस हुन अचानक पेरंग कुमो हते टोशिमा तो मुलुक रुपया खर्चा चितनी होए समय कुमो कमांग बचनी हो। खासकर मनारिंग जानूता बचत लनु वाल आदत दाम निजनी होए ता ई दम छेसमी ख्याचता किमु कुमो बचत लनन पेरऊँ तो खुन कई कठिन संकटोच बोचे आजनी हो। जोर छेसमी तो वाल योगदान निजनी हो। फालतू खर्चा का देन नियंत्रण लनिम ग्याच दिखावा देन खर्च मलंस ग्रामीण देशा नोली ख्याचता हुन स्वयं सहायता समूह का देश के यानी हेल्प ग्रुप ली मनारिंग जनू बचत उतंगे जो वाली दो प्रेरित नोनी हो। देशानो ख्याचता मनारिंग जा एक आचिस सां सां दा रुपया का जमा लन लन लन ग्यामिक जरूरत पदे रंग दो खोदे रुपया जिगिस रोजगारे फिरू लनिम सोगेजनी हो। जूस तो आर्थिक स्थिति ता दो मजबूत हचो बीच नहीं हो। दंग जी ख्याचता स्वयं सहायता समूह मनारिंग जनु आर्थिक रूप से रोकवाली मजबूतली जुड़ियाजनी हो। स्वयं सहायता समूह ख्याचता एकता जो शक्ति निजनी हो। जिगित जिगित बचत लन्नन दोक जरूरत हचमू देन यू समूह दोक सदस्य पंग दोक रनिम सोकेजनी हो मनिया दे बल्कि जो आत्म समानु दोक पहचान ली निजनी हो। वैसे ही ख्याचता हुन जूता बताया शेष आंदा जो हाला दो खुन कशानु दैनिक जीवन हाला बचत लनिम गया मिक मानीमा दो खुन रुपया पैसा ते नी माली दो खुन होताली होदो होदोली होते ही घटो नीत नहीं हो। अगर बचत लनु नीमा घटो घटो रकम असली हुन देख देख देख बचत हचिम सो कैस नहीं हो। दो जो युम सो दो तेरंगली दो खुन कशानु

खोर्दलांनो दोगथदली मुसीबत बनू बेरंग कशा दोक माव्यांस नियो मानिया दे पैसे ही जुदा तो के सांदा पतंग चुक उनका तरे मा आई गिथंग ले रोंचे रोंची चू गिथंग।

प्रतिनिधि मंडल उतंग पत्या ने पत्या शिशिर नियो मुख्यमंत्री जी लोशित राज्य सरकार विभाग अध्यक्षनु पदारुकुमु चतुर्श्रेणी पेंशनरनु बकायाओ भुगतान सुनिश्चित लन्नु निर्देश ली रंशीत जू अलावा पेंशन बागीगारंग कर्मचारी गनु चिकित्सा संबंधी मामला गनुली पदारुकुमु निपट्या मोरिंगो लोशित सुखविंदर सिंह सुखूज लोशित राज्य सरकार हर स्थितियो ओपीएसु लाभली जारी तातिश आई खबर तो राज्यपाल कविंदर गुप्ता शिमला लोकभवन कुमो यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन रिंगो हिमाचलु कोचंग तंबाकू मुक्त हिमाचलु अभियानु शुभारंभ लैसेत जू अभियानु प्रदेश उत्सोई सोनिश जिला गनुकुमो चलया तो जू उद्देश्य युवा छंगानु रंग आमी गनु तंबाकू सेवन दुष्प्रभावनु प्रति जागरूक लंगन दोक नशा मुक्त रंग स्वस्थ समाजु निर्माण लनोनियो जू दौरान यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संगठनों को चंग चलो मिशन उतेत यूथ फॉर साइज नो टू ड्रग्स यस टू पेंशन रुओ चोई जू जानकारी का रहसीत जू मिशन कुमो तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान तीमंक दोक संचालित लानो लैसी नियो राज्यपाल संगठनों जू को चंग सराहना लानो लोशित की समाज कुमो जू बोध्या दो जू नशा पंग खोतम लनु तांगेस युवा गनु कुमो जागरूकता कनु जरूरत रिंगो लोशित अने स्वस्थ रंग जिम्मेदार समाज निर्माण कुमो युवा गनु भागीदारी रंग सामूहिक सामाजिक प्रयासु खास भूमिका निभ्याशी वैसे ही तत्व के प्रदेशों खास खास खबर सा हुन बीमूल खमु दुनियो कच्चाई गिथंग लिरोंचे रोंची जुगिथंग।

पहिले सही चंद्रला नेगी जीपन किना रोंची शेतनियो कच्चा तो यहाँ पर देशो खबर सारों लियो किना नो वरिंग तो रक्षु खबर सारे न कुमो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुसलोशित राज्य विकासु कुमो पेंशनरे रंग कर्मचारी गानु अमूल्य योगदानु ध्यान ताता राज्य सरकार दोगानु कल्याणु तंगे प्रतिबद्धता कमंग लनोय अने स्तोरो शिमला छुक्षित पद से आजू हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघ संघर्षु समिति।

किन्नौरी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीत। सबसे पहले प्रस्तुत कर रहे हैं गंगा देवी की आवाज़ में ये प्रस्तुति।

0: लोकगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान पर लोकभवन शिमला को ईंधन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज बताया कि लोकभवन शिमला में प्रत्येक रविवार को पेट्रोल फ्री संडे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत रविवार के दिन कोई भी सरकारी वाहन ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार को निर्धारित सभी सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले के वाहनों को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की समाप्ति और वैश्विक ईंधन की कीमतों के स्थिर आने तक वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने सभी संबंधित कुलपतियों से प्रदेश के विश्वविद्यालय परिसरों में तत्काल प्रभाव से ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप से अपनाने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉ सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप व डॉ राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों को लेकर लोग उत्साहित हैं और मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा इस बार प्रचंड जीत हासिल करेगी।
3: नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बहुत गर्मजोशी के साथ लोग जो है वो उत्साह के साथ राजनीतिक रैलियों में, कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था हम 15 में से 11 सीटें यहाँ पर मंडी में जीते और अब की बार ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि पूरे देश भर में एक वातावरण, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साहित है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की जो जन विरोधी हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
1: उधर कांग्रेस

0: पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए 17 मई को होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नाहन के एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि आज मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी जानकारी दी गई।
1: 17 मई को एमसी नाहन के इलेक्शंस हैं, तो इस बारे में जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, फर्स्ट रिहर्सल इनकी 27 अप्रैल को की गई थी, तो आज 13 मई को इनकी सेकंड रिहर्सल कराई गई और साथ में हमने ईवीएम रखे जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हमारी पोलिंग पार्टीज कर रही हैं। इस ट्रेनिंग में हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी पार्टीज को कराई है और इनको डिटेल में कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं, ईवीएम्स को लेकर उन्होंने क्या प्रिकॉशन रखनी है, पोलिंग बूथ पे जाकर उन्होंने क्या अरेंजमेंट करने हैं, सीक्रेसी ऑफ वोट कैसे मेंटेन करना है, इन सारी बातों पर जो है वो विस्तृत ट्रेनिंग दी गई।
0: उधर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों ने वेतन मिलने के बाद आज अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि निगम की चालक व परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो 2 तारीख से वे अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं बिलासपुरी कार्यक्रम।

उच्ची ऐ तरीड़ी ऐ बंगलू पवादियाँ। ते एह् लोक गीत सुनेआ तुसें विद्या देवी होरी दी आवाज़ा च। हुण असें गल्ल करनी आत्म विश्वास च छिपीरा सफलता रा राज। जीवन रे किसी भी क्षेत्र च सफलता पाने खातर आत्म विश्वास सभी ते खास कुंजी। ये एक एड़ी मानसिक और आंतरिक शक्ति सहज माणुए जो अपनी क्षमता और योग्यता पर अटूट विश्वास दिलवावाई। ये सिर्फ अपू पर ही भरोसा करना नहीं बल्कि ये सह ऊर्जा ही सहज आहां जो चुनौतियां रा सामना करने और अलग अलग परिस्थितियां च आगे बढ़ने रा साहस दिवाई। ये सच्चा कि सफलता रा रहस्य आत्म विश्वास च ही छिपीरा। सफलता कदी भी आसानिया ने नहीं मिलती, इसा खातर मेहनत और लगनारी जरूरत हुई। आत्मविश्वास अहां जो ये विश्वास दिलावा कि अहें सहज चाहें तिस जो हासिल कर सकें। आत्मविश्वास वाले लोग चुनौतियां जो

खतरा नहीं बल्कि एक मौके रे रूप च देखा है। तो इस पर जे विजय प्राप्त की जा सके, आत्मविश्वासी माणू असफलता ते निराश होए ने हार नहीं मंदा बल्कि असफलता ते सीख लेने नौई ऊर्जा सौगी दोबारा कोशिश करा। आत्मविश्वास या सहजे आदमी जो सही वक्ता पर ठीक फैसले लेने खातर शक्ति देवा और तिस्ते जे असमंजस कने डराते मुक्त होने अपने लक्ष्य रे पासे बदा। ए आहां जो पीड़ा ते अलग पहचान बनाने और अपने विचारां जो स्पष्ट रखने च मदद करा। आत्मविश्वासी माणू सकारात्मक सोच रखा तिस्ते जिसे अपने कम्मा जो ठीक ढंगा ने पूरा करी पावा, तांजे आहें अप्पू पर विश्वास करें तो आहें दूजियां जो भी प्रेरित करें और कठिन परिस्थितियां च भी अपना धैर्य नहीं गवांदे। इतिहास गवाह कि सारे सफल माणुआं च अटूट आत्मविश्वास था। महात्मा गांधी जी आत्मविश्वास रे दमा परी सत्य और अहिंसा रे सहारे भारत जो आज़ादी दिलाई। थॉमस एडिसन ने बार बार असफल होने रे बाद भी अपने अविष्कारां पर विश्वास रखिया और सफल होए। कोलंबस से भी आत्मविश्वास सौगी नौ विश्वरी खोज की थी। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं आ, इस जो मेहनत और अभ्यास होगी विकसित कित्या जाए सका। किसी भी कम्मा जो करने खातर जितनी अच्छी तैयारी होगी आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा होना। नकारात्मक विचारन जो मना ते दूर रखना और छोटे छोटे लक्ष्य जो पूरा करने आस्ते आस्ते आत्मविश्वास बढ़ाया जाए सका। आखिर च यही बोलिया जाए सका कि आत्मविश्वास सफलता री आधारशिलाई। बिना इसरे माणू अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जे तुहें अपने सपने जो पूरा करना चाहवा है तो सभी ते पहले अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करा। जे तुहें अपू पर भरोसा कर गए तो दुनिया भी तुहां पर भरोसा करना और सफलता तुम्हारे कदम चुमगी। आत्मविश्वास ही सफलता रा असली रहस्य। जे कोई आदमी सपने तो देखा पर तिना जो पूरा करने खातर जरूरी कदम नहीं चकदा ता सपने बेकार है। सफलता खातर समर्पण दृढ़ता और चुनौतियां रा सामना करने रा साहस जरूरी है। कुछ लोगों खातर सफलता रा मतलब धन दौलत हुआ, हालांकि सच्ची सफलता अपने सपने जो साकार करने और अपने लक्ष्य जो प्राप्त करने ची हुई। सफलता रे खास तीन मंत्र है, स्पष्ट लक्ष्य, कड़ी मेहनत और निरंतरता। ये मंत्र आदमी जो अपने सपने जो पूरा करने, चुनौतियां रा सामना करने और लगातार सीखने और सुधार करने खातर प्रेरित कराए। इना मंत्रा रा पालन करने ते कोई भी आदमी अपने जीवन च सफल हो सका। तां जी ये गल कीती है आत्मविश्वास री, हुण सुन लो एक और लोक गीत।

इन्हां ते माण्हू, पशु और पर्यावरण जो बहुत फ़ायदा हुआ। पौधे जे ता ए खाद्य श्रृंखला रा आधार बनाए, हवा जो शुद्ध कराए, कई आर्थिक क्षेत्रां च कच्चा माल भी उपलब्ध करावाए। पौधे माणू और पशुओं रे खाने रे रूपा च फल, सब्जियां, अनाज, मेवे और मसाले भी देवाए। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छड्डें, सहजे जानवरां और आदमी रे सांसा खातर बहुत ज़्यादा जरूरी। नीम, तुलसी, अश्वगंधा जी दवाइयां पौधों रा इस्तेमाल पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा च कित्या जावां। कपाह, अलसी और जूट पौधों ते मिलें और इन्हां रा प्रयोग कपड़े बनाने च कित्या जावां। पेड़ां री लकड़ी घर और फर्नीचर बनाने खातर कम्मां च आवां। पेड़ां री लकड़ी रा गुद्दा कागज़ और पैकिंग करने रे कम आवां। घर रे अंदर लगाए जाने वाले पौधे, फूल और बागवानी रे पौधे घर री शोभा बढ़ावाएं। पौधे जलवायु जो स्थिर कराएं, मिट्टी रे कटावा जो रोकें। नीम, बड़, अंब जे बड़े मजबूत पौधे सजे लकड़ी, फल और छाया खातर आहार जीवना च अमूल्य है। पेड़ पौधे प्रकृति रा अमूल्य उपहार है। ये सिर्फ जमीना री सुंदरता ही नहीं बधांदे, बल्कि सारे जीव जंतुओं रे जीवना रा आधार भी है। आदमी, पशु, पक्षी और दूजे जीव जंतु पेड़ां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपा ते निर्भर है। पेड़ां ते आहां जो शुद्ध हवा मिलाई, ए वातावरण जो भी ठंडा रखा है और बरखा लियाने च भी मदद कराएं। इन्हारे बिना जमीन सूखी और बंजर लगाई। कई पशु पक्षियों रा घर भी पेड़ ही हैं। अजकने टाइम च लोग विकासा रे नाव पर पेड़ां री कटाई करते जाए दे, इस ते प्रदूषण बढ़िया दा और तापमान च भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया दा। जंगलों रे खत्म होने ते कई जीव जंतु विलुप्त होते जाए दे। जे इसी तरह पेड़ां री कटाई होती रही तो जमीना पर जीवन संकट च पई जाना। आहां जो ज़्यादा तो ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और दूजियां जो भी इस खातर प्रेरित करना चाहिए। जे हर माणू एक पेड़ लगाए और तीसरी देखभाल करे तो आहारा पर्यावरण सुरक्षित और स्वच्छ बनी सका। पेड़ जीवना रे आधार है। इन्हारे बिना पृथ्वी पर जीवना री कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस खातर आहां सभी जो पेड़ां री रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण जो हरा भरा बनाने रा प्रयास करना चाहिए। तो जी ये तो अं गल की पेड़ पौद्या री, हूँ सुन लो है कुछ खास खास खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू होरी बोलिया कि राज्य रे विकास च पेंशनर और कर्मचारियों रे कीमती योगदान जो ध्यान च रखते हुए राज्य सरकार तिन्हारे कल्याण खातर काम करे दी। सह शिमले च तिन्हां ने मिलने आए रे हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति रे प्रतिनिधिमंडला ने गलबात करे दे थे। मुख्यमंत्री होरी बोलिया कि राज्य सरकारें विभागाध्यक्षां जो चार दिन रे अंदर चौथी श्रेणी रे पेंशनर रे बकाए रा भुगतान करने जो बोलिया। इसरे अलावा पेंशन भोगी और कर्मचारियों रे चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों जो भी चार दिन च निपटाने जो बोलिया। सुखविंदर सिंह सुखू होरी बोलिया कि राज्य सरकार हर स्थिति च OPS रे फायदे जारी रखने। मंडी नगर निगम चुनाव खातर भाजपा आज अपना संकल्प पत्र

जारी कीता। भाजपा नेता और विधायक अनिल शर्मा होरी संकल्प पत्र जारी करते हुए बोलिया कि पार्टी का लक्ष्य मंडी जो आधुनिक सुरक्षित व्यवस्थित और पर्यटनरी नज़रा से विकसित शहर बनाना। तिने बोलिया कि यह संकल्प पत्र सिर्फ घोषणा रा दस्तावेज नहीं आ बल्कि आने वाले 5 साल मंडी नगर निगम रे विकासारी कार्य योजना भी। अनिल शर्मा होरी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार रे कार्यकाल मंडी नगर निगम जो संसाधन और स्टाफारी भारी कमी झेलनी पिया थी जबकि जयराम सरकारे मंडी जो नगर निगम रा दर्जा देने विकासारा नवा अध्याय लिखा था। सर्दियों के मौसम भारी बर्फबारी होने के कारण बंद चंबा किलाड़ बाया साच पास मार्गा जो लोक निर्माण महकमे छोटी गड्डिया खातर खोली दिया। करीब 14.5 फुट री ऊंचाई ते जाने वाले इस रस्ते ते खुलने ते पांगी रे लोगों जो बड़ी राहत मिली और गड्डिया चलने ते घाटिया रा संपर्क जिला मुख्यालय ने भी जुड़ी गया। उपायुक्त होरी दस्या कि इस रस्ते रे खुलने ते चुनाव संबंधी सामग्री पांगी घाटी तक पहुँचाने च भी आसानी होनी। तो ये थी जी खास खबर। हुण सुन लो एक और लोक गीत।

नमस्कार जी, देवशम श्रीरी जय जयकार। हाँ, साक्षी ठाकुर तुसा सभी रो स्वागत करूँ आकाशवाणी रे यू कुलवी कार्यक्रम जी। तेजी सौंस के बोजी को 6:35 ते समय आसा अपने कुलवी कार्यक्रम रो। तेजी शोभले माणुओ ओस के यू मारे कार्यक्रम हामा गलबात केनी दुई महत्वपूर्ण विषय गोय जे तमंजे पहलो विषय आसा अटल टनल एक शोभलो पर्यटन स्थल होर मारो दूजो विषय आसा अंबिका माता मंदिर निर्मंड। तेजी कार्यक्रमारी शुरुआतन सभीन पहले तो मसोबिले पेश आसा एक शुभलो कुलवी लोकगीत अनिता देवीरी आवाजन तेजी मजोलिया एवं शोभले जया रागरो।

नवो रास्तो बणावदो आसा. सुरंगा भितरी आधुनीक लायटींग, सुरक्षा वेवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे होर वेंटिलेशनरो सिस्टम बी लागदो आसा. ओ यात्रा बे सुरक्षित होर आरामदायक बणावा. अटल टनलारे उत्तरी छोराके बागले निकलती फेरी प्रकृतीरो एक नवो संसार भाळलेले मेळा. सामने हिंवा संगे ढोकी दी धारा, हरे भरे मैदान, बोंदी नदी होर शांत वातावरण मनाबे मोह लिया. पर्यटक इदी मंजी रुकी करे फोटो शोटो लिया, प्रकृति रे सौंदर्य रो आनंद लिया, होर पहाड़ारी ठंडी बागरी रो भी अनुभव केरा. शुभले माणुओं, ओ सुरंग सीधो पर्यटन स्थल नहीं सा, बल्कि स्थानीय लोगाले वरदान भी आसा. पहले लाहौल स्पीति रे लोग कई महीने तेणी दुनिया के कटी जाती, आवश्यक सामान पजेरना भी मुश्किल हुआ थी. मरीजबे अस्पताड़ा तेणी पजेरना भी मुश्किल हुआ थी. लेकिन हैबे अटल टनला बनने बाद तिनारी जिंदगी बदली गई. शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और रोजगार रे नवे अवसर भी खुली गए. किसाना होर व्यापारी वे अपने उत्पाद बाजारा तेणी पजेरने री सुविधा भी मैड़ी गए. इतसी तिथि सी शुभले माणुओं, जै तो मैं रोमांच पसंद केरा ते अटल टनलारी यात्रा तो मले बेहद खास होई सोका. मनाड़ी के अटल टनलारे डेवने आड़ रोस्तो देवदारे रे जंगला, पहाड़ी मोड़ा होर खूबसूरत घाटी के गुजरा. रास्ते जी तो मैं प्रकृति रे एह दृश्य भाड़ने ले मेड़ा, जिना भाड़ी को रे मन प्रसन्न होई जा. बाइक राइडर्स होर कार यात्री बे ओ मार्ग क्यों सुपने के कम नहीं हुआ. अटल टनल भारतारी सेना ले भी बेगे महत्वपूर्ण आसा. ओ सुरंग सीमावर्ती क्षेत्र तेणी पुजने रो होर समय कम केरने रो एक माध्यम सा, होर सैनिका ले आवश्यक सामग्री पजेरने दे भी मदद केरा. ओ ही कारण आसा कि ओ परियोजना रणनीतिक दृष्टि के भी बेगे अहम मानी जा. जे भी हमें अटल टनलारी गल केरा ते हमें भारतारे तिना इंजीनियरा, मजदूरा होर कर्मचारी भी याद करने चाहिए जिन्हें कठिन परिस्थिति जी भी ऐसा सुरंगारो निर्माण केरो. भारी हियों, कड़ाकेरी ठंड होर कठिन पहाड़ी परिस्थिति रे बावजूद तिन्हें हार ने मानी. तिनारी मेहनत होर लगनारे परिणाम स्वरूप औज ओ अटल टनल मारे सामने आसा. शुभ लिमाणु, जे तो मैं कुड़ू मनाली घूमने री योजना बनाने लागे दे सा ते अटल टनला भी जरूर अपनी सूची दी शामिल केरे. इधारी प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच सफर होर आधुनिक निर्माण कला तो मैं जिंदगी भर याद रोनी. औ जगह परिवारा, दोस्ता होर यात्री संगे घूमने ले बेगे खास आसा. तेजी शुभले माणुओ, अंताजी हाँ बस ओई बोलनो सऊ कि अटल टनल सीधी एक सुरंग नहीं सा, बल्कि विकास, साहस होर सुपने रो प्रतीक सा. ओ हमा खोजा कि जे मारे इरादे मजबूत आसा ते पहाड़ भी रास्तो दे दिया. हिमाचलरी गोदन बसी दी ओ खूबसूरत धरोहर हर कोई बे अपनी ओर आकर्षित किया. तेजी शुभले माणुओं, जे कि भी मनाली जाने रो मौको मेले ते अटल टनलारी सैर जरूर केरे होर प्रकृति रे ए अनोखे चमत्कारा बे अपनी आखी सीती जरूर भाड़े. तेजी पहले पड़ावन इतरो ही हैबे तो मैं सुना एक होर शुभलो कुलवीलो का गीत श्याम शर्मारी आवाजन.

तेजी शोभले मणु तुम्हें सुनते लगते आसा कुलवी कार्यक्रम ते कार्यक्रम दूजे पड़ावन हामा हिमाचल प्रदेशारी देवभूमि कुड़ू दी बसे दे एक अत्यंत पवित्र प्राचीन होर श्रद्धा संगे भरे दे स्थानारी यात्रा केरनी और स्थान आसा निर्मंडारो अंबिका मातारो मंदिर पहाड़ारी गोदादी बसोनो निर्मंड अपनी धार्मिक महत्व संस्कृति विरासत होर प्राकृतिक सुंदरता ले दूरा दूरा तेनी प्रसिद्ध आसा। इदी मंजे बोनो दो अंबिका मातारो मंदिर ना सीधो स्थानीय लोगारी आस्थारो केंद्र सा जबकि औस्थान इतिहास परंपरा होर भक्तिरो एक अद्भुत संगम भी प्रस्तुत केरा। हिमाचल प्रदेशारे कुड़ू जिले न स्थित निर्मंड एक प्राचीन होर ऐतिहासिक क्षेत्र सा। एहू कोई लोग हुसी काशी रे नाव संगे भी जाना किले की इदी मंजे अनेक प्राचीन मंदिर स्थित सा। इना मंदिरा में अंबिका माता मंदिरारो एक विशेष स्थान सा। ओ मंदिर माता दुर्गा रे स्वरूप अंबिका देवी ले समर्पित आ।

माँ अंबिका शक्ति साहस करुणा होर रक्षारी प्रतीक मानी जा। इता तेणी एवं मंदराजी आने आड़े श्रद्धालु माता रे दर्शना कर दे छा होर अपनी जिंदगी जी सुख शांति होर समृद्धि री कामना किरा। जे भी कोई माणू पहली फेरी एवं मंदरा रे दर्शन कर दो इच्छा ते तेउरे मना जी श्रद्धा रो भाव अपने आप ही जागी जा। शुभले माणुओ, मंदरा री पारंपरिक पहाड़ी वस्तुकला शैली एवं होर भी आकर्षक बनावा। लाकड़ी होर पाथर संगे बनो दो ओ मंदिर हिमाचला री प्राचीन निर्माण शैली रो एक शुभलो उदाहरण आसा। मंदरा री भीत द्वार होर खिड़की गोए बोणी दी नकाशी देखने जोगती आसा। ओ नकाशी सीधी कला नाई सा जिबकि तेउ समय रे कारीगरा री अद्भुत प्रतिभा रो प्रमाण आसा। मंदरा रे सारी बाखे फैलो दो शांत वातावरण, देवदार होर जिला रे पेड़, ठंडी बागरी होर पहाड़ा री शुभली सुंदरता मनबे आनंद संगे भरी दिया। एओ जानिया जो प्रकृति स्वयं भी इदी माता री आराधना जी लीन आसा। दूत के बाखे जे भी मांदरा जी घंटी बाजा होर आरती री ध्वनि वातावरणा जी गुंजा ते भी पूरो क्षेत्र भक्तिमय होई जा। तेउ समय तिदी उपस्थित हर माणु एक अद्भुत शांति रो अनुभव केरा। इधरे लोगा रे अनुसार ओ मंदिर बेगे प्राचीन होर सदियोरी लोगा री आस्था रो केंद्र बणो दो आसा। ग्राउं रे माणु हर शुभ काम के पहले माता अंबिका रो आशीर्वाद लेंदे इच्छा। ब्याह, नामकरण, त्यौहार, नवी फसल, नवो व्यापार हर अवसरा गोए माता रे चरणा दी माथो टेकने री परंपरा उस भी जीवित सा। ओ मंदिर सीधो पूजा रो स्थान नहीं आसा बल्कि समाजाबे जोड़ने आड़ो सांस्कृतिक केंद्र भी सा। तेजी शोभले माणुओ, नवरात्रे रे वक्तन एओ मंदिरा री रौनक देखने जोगती होआ। दूरा दूरा के श्रद्धालु माता रे दर्शन कर दे निर्मंडले इच्छा। मंदिरा वे फूल होर रंग बिरंगी सजावटा संगे सजावा। भजन कीर्तन, पूजा पाठ होर जागरण रो आयोजन धैड़ होआ। भक्त व्रत भी रहा, माता रे जकारे भी ला होर पूरी श्रद्धा भावा संगे माता री आराधना किरा। ते उस समय निर्मंडा रो वातावरण भक्ति होर उत्साह संगे भरी जा। शुभले माणुओ, अंबिका माता मंदिर संगे जुड़ी दी कोई लोक कथा प्रचलित आसा। एओ बोला कि माता अपने भक्ताई सच्चे मना के की दी प्रार्थना जरूर सुना। कोई लोग माना कि बुरे वक्तन माता तीना बे राह भी दिखावा, संकटा के दूर केरा होर मनोकामना बे पूर्ण केरा। ओई कारण आसा कि एओ मंदिर रे प्रति लोगारी श्रद्धा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ दी लागी दिया सा। जहाँ मैं निर्मण क्षेत्र री गल केरे ते ओ स्थान प्राकृतिक सुंदरता संगे भी भरपूर आसा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरियाली संगे ढोकी दी घाटी, निमड़ी बागरी होर शांत वातावरण एवं एक आदर्श पर्यटन स्थल भी बनावा। जुण यात्री इधी एछा सी धार्मिक दर्शनारे संगे संगे प्रकृति रो आनंद भी लिया। अंबिका माता मंदिरा री यात्रा मनबे आध्यात्मिक शांति देने संगे संगे प्रकृति संगे जुलने रो अवसर भी दिया। ओ मंदिर हामा मारी संस्कृति होर मारी परंपरा संगे जोड़ा। उसके आधुनिक युगन जे भी लोग व्यस्त जिंदगी जी उलझी करे रोई जा, ते भी एह पवित्र स्थान हमा अपने मूल्यों, विश्वास होर आध्यात्मिकता री याद दिलावा। मंदरा री शीड़ चौल दी फेरी व्यक्ति सीधो गिशाले ने डेवा बल्कि अपने भीतरी भी उतरा। तेउ महसूस हुआ कि सच्ची शक्ति बाहरी नाई बल्कि भीतरारी श्रद्धा होर विश्वास जी हुआ। शुभले माणुओ, निर्मंडा रो अंबिका माता मंदिर स्थानीय कला होर संस्कृति रो भी प्रतीक आसा। इधरे मेले, त्यौहार, लोक नृत्य होर पारंपरिक वाद्य यंत्र हिमाचली संस्कृति री सुंदर झलक प्रस्तुत केरा। जे भी कोई उत्सव हुआ ते भी इधरे लोग पारंपरिक झिकड़े पहनी गोरे माता रे दर्शन के दे इच्छा ते अदृश्य मनाबे मोह लिया। ओ परंपरा नवी पीढ़ी ले अपनी जड़ा स्थिति जुलने रो एक अवसर सा होर जड़ा सिथी जुलने रो काम किरा। जे तो मैं निर्मंडारी यात्रा केरने रो मन बनावे ते निर्मंडारी

ए अंबिका माता मंदरा रे दर्शन जरूर केरे। ई दीपू जी कोरे तो मैं सीधो एक मंदिर नहीं बल्कि शांति, श्रद्धा, इतिहास और प्रकृति रो संगम भानले रे मिलनो। मंदिर परिसरा जी किस गड़ी बेशी कोरे जे भी तो मैं पहाड़ा री ओर भालनो ते मन अपने आप ही शांत हो ही जानो। तेजी अंताजी हाँ सीधो ओई बोलनो चाहूँ कि निर्मंडा रो अंबिका माता मंदिर सीधो ईंट पाथर होर लाकड़ी संगे बोणों दो भवन नहीं आसा बल्कि इधरे लोगारी आस्था, विश्वास और संस्कृति रो जीवंत प्रतीक सा। ओ स्थान हम अशकड़ेवा कि जिंदगी दी चाहे कितनी भी मुश्किल आए जे मन दी श्रद्धा हो ते हर रास्तो सान होई जा। माता अंबिका रो आशीर्वाद सदैव अपने भक्ता गोई बोणी रहे। तेजी शुभले माणू मारे कार्यक्रम रे दूजे पड़ावन बस इतरो ही। आशा सा कि तुमा ओ जानकारी पसंद आई होनी। हैवे पेश सा तुम सभी ले एक होर शुभलो कुलवी लोकगीत।

तेजी शोभले माणु एवं शोभले जे लोकगीता संगे संगे आज के मारे कार्यक्रम रा हुई गया वक्त अपना ख्याल डाए परिवार भी ख्याल डाए ते साक्षी ठाकरा भी दिया इजाजत फिर मेल में नई जानकारी सी थी तेब तेणी नमस्कार।

0: country based on emerging leads. The government of West Bengal has decided to hand over the cases related to the teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative service recruitment scams to the CBI. Chief Minister Shubhendu Adhikari alleged the former TMC government had not taken any step in these cases in order to safeguard the corrupt officers. He informed the media the current government of West Bengal would take zero tolerance to institutional corruption. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Legislative Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of the new term. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his South African counterpart Ronald Lamola in New Delhi this evening, ahead of the BRICS Foreign Ministers Summit scheduled tomorrow. In a social media post, Dr. Jaishankar said that during the meeting, they reviewed different aspects of strategic partnership between India and South Africa. In Thailand, Open Badminton star shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen and Kidambi Srikanth progressed to the pre-quarterfinals of singles events in Bangkok. In women's singles, a two-time Olympic medalist, PV Sindhu defeated Tang Xiao Tong of Chinese Taipei. She will take on Amelie Scholz of Denmark in round of 16 tomorrow. In men's singles, 7-seed Lakshya Sen prevailed over Singapore's Xia Heng Jason Ta. He will square off Chinese Taipei's Su Li Yang. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। एफएम शिमला पर ये समय रहता है कृषि जगत कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाई, इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ हरी शर्मा।
3: और मैं हूं हेमराज शर्मा।
2: हेमराज जी, सुनाए कैसे हैं आप?
3: हरी जी, मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: हेमराज जी बिल्कुल बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान और बागवान भाई बहन है वो भी अच्छे से हो गए और अपने कृषि और बागवानी के जो दैनिक कार्य है उसमें व्यस्त हो गए। आज कार्यक्रम में क्या कुछ खास जाने वाला है उसकी जानकारी हम उनको दे देते हैं।
3: बिल्कुल हरी जी, देखिए काम की बातों के अंतर्गत हम बात करेंगे गर्मियों में हरे चारे की बिजाई इस विषय के बारे में, और उसके बाद पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे किसान श्रोताओं का, और जानकारी पूर्ण बातचीत के तहत आज किसान भाइयों को जिस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी वह है दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उपचार। डॉक्टर अनुज बाली से जानकारी हासिल करेंगे देवेंद्र, तो किसान भाई सुनेंगे इसका पुनः प्रसारण, और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे कल के मुख्य आकर्षणों के बारे में।
2: जी किसान भाई, तो शुरू करते हैं गर्मियों में हरे चारे की बिजाई के बारे में जो आज हमारा काम की बातों में विषय रखा है। वैसे तो किसान भाई आप जानते हैं कि गर्मियों में हरे चारे की काफी समस्या रहती है और हमारा जो किसान वो काफी परेशान हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक चरागाहें पशुओं के चारे की मुख्य स्रोत है। चारे की पैदावार बढ़ाने और हरे चारे की पूरे साल उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि चारे की उन्नत किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाया जाए। प्राकृतिक चरागाहों से अधिक घास प्राप्त करने के लिए उनके प्रबंध एवं सुधार के लिए जो है हमारा किसान विशेष ध्यान दे। मानसून के मौसम में चरागाहों से आवश्यकता से अधिक घास को साइलेज के रूप में परिरक्षण करना अति आवश्यक होता है, ताकि इसका उपयोग उसमें किया जा सके जब हमारे पास चारे की किल्लत हो।
3: बिल्कुल हरी जी, देखिए यद्यपि जो घास है उसको बार बार काटा जा सकता है, लेकिन घास को भी अन्य हरे पौधों की तरह खुराक बनाने के लिए पत्तों पर ही निर्भर रहना पड़ता है
2: जी।
3: और सही ढंग से काटने या चराने से ही अधिक चारा मिल सकता है। यदि दूसरी घासों को अधिक समय तक बढ़ने दिया जाए तो घास की पौष्टिक शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि फसल की बढ़ोतरी के साथ प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये प्रयत्न भी करना चाहिए कि बरसात के मौसम के समाप्त होते ही चारागाहों से घास काटकर उसे सूखे घास में बदल देना चाहिए, और यदि चारागाहों की कटाई उस समय की जाए जब घासें पक गई हो तो इनमें पौष्टिक शक्ति बहुत कम रह जाती है। चारागाहों से बढ़िया हरा घास प्राप्त करने के लिए इनमें खादों का प्रयोग करना चाहिए तथा दो बार घास काटना चाहिए
2: जी। किसान भाई, जंगलों में पशुओं को अधिक नहीं चराना चाहिए, क्योंकि एक तो वहां उगने वाली किस्मों का विनाश हो जाता है और दूसरा घास भी जो है वो कम होने लगता है।
3: बिल्कुल हरी जी, देखिए गर्मियों में अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा गर्मी में अन्य चारों की अपेक्षा काफी जल्दी पकने और बढ़ने वाली चारा फसल होती है, क्योंकि ये शुष्क जलवायु का पौधा है
2: जी।
3: ये सूखा और गर्मी दोनों को

0: आसानी से सहन करने वाली फसल है, जिसमें बहुत अधिक कल्ले निकलते हैं। ये चारे के रूप में कटाइयां देने की क्षमता भी रखता है। इसके तने पर घनी पत्तियां होने के साथ साथ सुकोमल होती है। इसका चारा अधिक प्रोटीन युक्त, पौष्टिक और स्वादिष्ट भी होता है। इसके चारे में प्रूसिक अमल नहीं होने के कारण गर्मियों के दिनों में पशुओं को खिलाने के लिए अधिक सुरक्षित माना गया है। इसमें ऑजेकिल अमल की मात्रा भी कम होती है और इसे दलहनी चारा जैसे की चोला और गवार आदि के साथ कुट्टी करके खिलाना चाहिए। बाजरा जो है जायद में उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे कि जवार तथा मक्का की अपेक्षा अच्छा पनपता है। और ये भी देखा गया है कि जब गर्मी के महीनों में तेज धूप और धूल भरी आंधियां चलती है तो बाजरा अन्य फसलों की अपेक्षा सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके पौधे दोबारा जो है फुटान कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये देखा गया है कि बाजरे का चारा मक्का से अधिक पौष्टिक होता है। गर्मी में इसका चारा दुधारू पशु के लिए अधिक उत्तम माना गया है। बाजरा की फसल को किसी भी अवस्था में काटा जा सकता है तथा पुनर्वृद्धि फिर से जल्दी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसको जायद में चारे की फसल के रूप में बोया जा सकता है, जिससे चारे की आपूर्ति होने के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में आने वाली गिरावट को कम करके दुग्ध उत्पादन की मात्रा को बराबर बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में ये काफी मददगार है।
0: बिल्कुल हरी जी, और देखिए गर्मियों में बाजरे की बिजाई की हम बात कर रहे हैं तो देखिए खेती की तैयारी हमारे किसान भाइयों ने कैसे करनी है। बाजरे का जो बीज होता है अन्य चारा फसलों की तुलना में छोटा होता है, इसलिए इसकी खेत की तैयारी करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी भुरभुरी हो, खेत में ढेले नहीं होने चाहिए। खेत की मिट्टी की जुताई इस प्रकार करें कि बीज भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जा पाए तथा मिट्टी के संपर्क में अच्छी तरह से आ जाए। चारे के लिए बोई जाने वाली बाजरे की फसल के लिए खेत में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो जुताइयां देशी हल से करके पाटा लगा देना चाहिए, जिससे ढेले टूट जाते हैं और मिट्टी की टिल्थ जो है वो अच्छी बनती है। चारा के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव की अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन हरा चारा लेने के लिए बाजरा की उन्नत किस्मों में मुख्य रूप से पीसीबी 164, एफबी 16, बीजे 104, ज्वाइंट बाजरा, राजको बाजरा S530, राज बाजरा चरी 2, HC20, HB5, T55, पूसा 334 जो है ये मुख्य बाजरे की चारे वाली फसलें हैं और ये सभी बहु कटाई वाली किस्में हैं।
1: जी किसान भैया, अब बात करते हैं मक्की की। तो मक्की भी है जो चारे वाली फसलों में एक मानी जाती है।
0: जी
1: क्षेत्रफल तथा उपज की दृष्टि से मक्की हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है, पर इसे चारे के लिए भी हमारा किसान उगा सकता है, क्योंकि इसे अधिक उपज और अच्छी किस्म का हरा चारा हमारा किसान प्राप्त कर सकता है और ये साइलेज बनाने के लिए भी काफी उत्तम है। और सिंचाई वाले क्षेत्रों में मानसून से पहले यानी कि मार्च से जून के महीने में जो है हमारा किसान भाई मक्की को रोंगी के साथ उगाकर चारे के लिए एक फसल इसकी ली जा सकती है, ताकि गर्मियों में हरा चारा उपलब्ध हो सके। अच्छी परिस्थितियों में 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग हरा चारा हमारा किसान भाई इसका प्राप्त कर सकता है। और जहां तक अनुमोदित किस्मों की बात है तो अफ्रीकन टाल और देसी किस्में इसकी प्रमुख किस्में मानी गई है।
0: बिल्कुल हरी जी, और देखिए बीज की मात्रा की बात करें तो फसल को केरा विधि द्वारा 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के अनुसार बोना चाहिए। अगेती फसल के लिए बिजाई मध्य मार्च से मध्य अप्रैल में करनी चाहिए और मानसून फसल के लिए बिजाई मानसून की बारिशें आरंभ होने पर करनी चाहिए। खाद और उर्वरक की बात करें तो अच्छी उपज लेने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस की पूरी मात्रा बिजाई के समय डालें। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा जैसे मक्की की फसल में डालते हैं उसी तरह डालनी चाहिए।
1: जी किसान भैया, बात करते हैं सिटेरिया की। तो ये नई किस्म है जिसे 300 से 400 मीटर की ऊंचाई तक स्थित सम उष्ण कटिबंधी घासनियों व चरागाहों के लिए अनुमोदित किया गया है। ये घासनियों में स्वयं बीज उपलब्धि के लिए उपयुक्त है और इसके पत्ते लंबे व पतले, नरम व गहरे हरे रंग के होते हैं और जड़ें गहरी गुच्छों में होती है। फूलों वाला भाग पहले हरा होता है और पकने पर गहरा बादामी हो जाता है। इसका जो पौधा है वो 1.0 से 1.5 मीटर लंबा होता है और बीज बहुत छोटे इसके रहते हैं। इसकी बढ़ोतरी मार्च से दिसंबर तक होती है और 3 से 4 कटाइयां जो है हमारा किसान प्राप्त कर सकता है। इसका घास बहुत ही पौष्टिक और पाचन वर्धक होता है, जिससे शुष्क पदार्थ के आधार पर 10 से 12 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा हमारा किसान भाई प्राप्त कर सकता है।
0: जी हरी जी, और देखिए एक अन्य घास भी है जिसका नाम PSS है। ये शीघ्र बढ़ने वाली बहुवर्षीय घास है जो ठंडे तथा पाला पड़ने वाले उष्ण कटिबंधीय घासनियों के लिए उपयुक्त है। इसके पत्ते गहरे हरे व तना मध्यम मोटा होता है। ये वर्ष में 9 से 10 महीने हरा रहता है तथा इसे 3 से 4 कटाइयां प्राप्त होती है। ये अप्रैल

0: जून तथा अक्टूबर दिसंबर में जब घास की कमी होती है, हरा घास उपलब्ध करवाती है, ये सूखा और सर्दी को सहने की क्षमता रखती है।
1: जी हेमराज जी, ये तो यही बात गर्मियों में हरे चारे की बिजाई के बारे में। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं किसान और बागवान भाई बहनों को प्रेम रोंटा की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत, तो लोकगीत के बाद अब समय आ गया है कि आपको एक जानकारीपूर्ण बातचीत सुनाई जाए। जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय है दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उपचार। डॉक्टर अनुज बाली से जानकारी हासिल कर रहे हैं देवेंद्र, तो आइए सुनते हैं इसका पुनः प्रसारण।
1: किसान भाइयों, स्टूडियो में आज उपस्थित है डॉक्टर अनुज बाली। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने पर स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय है दुधारू

0: पशुओं के मुख्य रोग और उनका उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं में मुख्यतः कौन कौन से रोग लग जाते हैं।
1: जी देखिए, मैं पशुपालक भाई बहनों को बताना चाहूँगा
0: जी
1: कि दुधारू पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कि विषाणु, जीवाणु, फंगस
0: जी,
1: प्रोटोजोआ, वो अंत वो बाह्य परजीवी जिनको पैरासाइट्स कहते हैं, ये पशुओं में कई प्रकार के रोग कर देते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा कुछ रोग पशुओं में कुपोषण के कारण हो जाते हैं, जिन्हें डेफिशिएंसी डिजीज भी कहा जाता है, तथा कुछ रोग शरीर के अंदर की जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है
0: जी,
1: उसमें बदलाव के कारण भी हो सकते हैं, जिन्हें मेटाबॉलिक बीमारी कहा जाता है। इन बीमारियों से बहुत सी बीमारियां जो होती हैं जानलेवा होती हैं, तथा कुछ बीमारियां पशु के जो उत्पादन है वो प्रजनन क्षमता में भी कुप्रभाव डालती है। कुछ बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु को हो जाती हैं, जिन्हें छूतदार या संक्रामक रोग भी कहा जाता है, तथा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में भी आ जाती हैं, जैसे रेबीज की बीमारी कुत्ते के काटने से हो जाती है
0: जी,
1: तथा जो टीबी या क्षय रोग है
0: जी
1: वो भी पशुओं से मनुष्य में आ सकता है। इन बीमारियों को जूनोटिक रोग कहा जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि इनके बहुत से कारण हैं, जैसे कि संक्रमण आपने एक कारण बताया, कुपोषण आपने दूसरा कारण बताया, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि पशुओं में ये जो रोग होते हैं इनका आधार क्या है, यानी कि ये कैसे हो जाते हैं।
1: जी देखिए, जैसे मैंने बताया पशु में ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं। जो पशु कमजोर होते हैं या कुपोषित होते हैं या जिन पशुओं का प्रबंधन ठीक प्रकार से ना किया जाए, उन पशुओं का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है
0: जी
1: वो कम हो जाती है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। इसके अलावा पशुओं को दूषित आहार देना, पशुओं को अस्वस्थ पशुशाला में रखना जहाँ हवा व रोशनी का उचित प्रबंध ना हो
0: जी,
1: पशुओं को दूषित पानी देना या बहुत सारे पशुओं को एक साथ रखना या पशुओं का दूषित प्रबंधन करना
0: जी
1: या उन्हें संतुलित आहार ना देना, इन कारणों से जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं ये पशु के शरीर में प्रवेश पाकर रोग फैला देते हैं।
0: अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोग के जो कीटाणु होते हैं वो पशुओं के शरीर में किन किन माध्यमों के द्वारा जा सकते हैं।
1: जी, जो रोगों के कीटाणु होते हैं ये विभिन्न मार्गों द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि पशु की त्वचा द्वारा और पशु के भोजन द्वारा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके द्वारा भी पशु के शरीर में ये जीवाणु या कीटाणु में प्रवेश कर जाते हैं।
0: जी,
1: जो सांस के इन्फेक्शन होते हैं जैसे खांसी, निमोनिया आदि, ये श्वास नली द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
0: जी,
1: कुछ बीमारों के जो जीवाणु होते हैं वो कंजंक्टाइवा द्वारा, जो आँख की झिल्ली होती है उस द्वारा भी पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, पेशाब के इन्फेक्शन होते हैं, ये मूत्र नाली द्वारा भी पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो माँ से बच्चे को भी गर्भनाल या प्लेसेंटा द्वारा चले जाते हैं।
0: जी,
1: कुछ रोग पशु के जो नाभि है उस द्वारा भी पशु के शरीर में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि नाभि की सूजन या नेवल इल, एक नवजात बछड़ियों की बीमारी है, इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो नाभि द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
0: जी,
1: कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो अयन या थनों द्वारा भी पशु के शरीर में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि थनेला रोग एक पशु में हो जाता है।
0: जी जी जी।
1: इसके अलावा कुछ रोगों के जो जीवाणु हैं वो परजीवियों द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में जा सकते हैं, जैसे कि बवेसिया रोग है जिसे टिक फीवर भी कहा जाता है, तो ये एक टिक द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है।
0: अब आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि दुधारू पशुओं में कौन कौन से प्रमुख संक्रामक रोग जो है वो प्रायः देखने को मिलते हैं।
1: जी देखिए, दुधारू पशु में बहुत से संक्रामक रोग होते हैं
0: जी,
1: जो एक पशु से दूसरे पशु में भी हो जाते हैं। जो संक्रामक रोग है ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।
0: अच्छा जी।
1: एक विषाणु जनित रोग होता है जिसे वायरल डिजीज भी कहा जाता है, इसके अलावा कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं
0: जी,
1: बैक्टीरियल डिजीज
0: जी,
1: और जो तीसरा होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, जो प्रोटोजोआ द्वारा पशु में हो जाते हैं। जहाँ तक हम विषाणु जनित रोग की बात करें तो इसमें तीन मुख्य रोग हैं जो पशु में हो जाते हैं, जैसे कि एक मुख रोग है, इसके अलावा रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग की बीमारी है, और पशु में पागलपन या रेबीज की बीमारी। ये विषाणु जनित प्रमुख रोग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं पशुओं में। इसके अलावा यदि हम जीवाणु जनित रोग की बात करें तो गलघोंटू रोग जिसे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहा जाता है, इसके अलावा लंगड़ा बुखार या ब्लैक वाटर बीमारी, ब्रुसेला या पशु में जो छूतदार गर्भपात हो जाता है
0: जी,
1: ये भी बैक्टीरिया द्वारा हो जाता है। इसके अलावा एंथ्रैक्स और टीबी की बीमारी भी बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोगों में आती है। यदि हम प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो इसमें बबेसिया, थलेरिया और ट्रिपेनोसोमियसिस, ये प्रमुख बीमारियां हैं जो गाय और भैंसों में हो जाती हैं।
0: जी देखिए डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने चर्चा की कि मुंह खुर की बीमारी
1: जी,
0: तो ये जो बीमारी है मुंह खुर की, ये कौन सी बीमारी है और इसके लक्षण क्या है और इसका उपचार किस प्रकार से हो सकता है।
1: जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है।
0: जी,
1: जो मुंह खुर की बीमारी है ये एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है

0: जो बहुत ही तेज़ी से फैल जाता है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पशुओं में होता है। जो ये बीमारी है, ये हमारी देसी नस्ल गाय की अपेक्षा
1: अच्छा जी,
0: जो संकर नस्ल की गाय है उसमें अधिक गंभीर रूप से पाई जाती है। वैसे तो ये रोग किसी भी मौसम में हो जाता है, परंतु बरसात के मौसम में इसका प्रकोप अधिक देखा गया है। यदि हम इसके रोग के कारण की बात करें तो एक पीको आरएनए वायरस होता है जिसके अनेक प्रकार तथा उपप्रकार होते हैं। इनके अगर प्रमुख किस्मों की बात करें तो ओ, ए, सी, एशिया 1, 2, 3 और सैट 1, 2, 3 तथा इनकी 14 उपकिस्में शामिल हैं। यदि हम अपने भारतवर्ष की बात करें
1: जी
0: तो ओ, ए, सी और एशिया 1 स्ट्रेन के विषाणु द्वारा ये बीमारी हो जाती है। और यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो इस विषाणु का जो ओ स्ट्रेन है ये बहुत अधिक पाया गया है। जैसे आपने इसके लक्षणों की बात करी तो पशुपालक भाई बहनों को इसके लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए।
1: क्योंकि तभी उपचार हो सकता है यदि हमें अच्छे प्रकार से लक्षणों के विषय में ज्ञान
0: बिल्कुल
1: हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी।
1: जी
0: तो इसके लक्षण की बात करें, जो बीमार पशु हैं उसमें
1: जी
0: तेज बुखार हो जाता है,
1: जी
0: 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। जो पशु है वो धीरे धीरे खाना पीना और जुगाली करना भी बंद कर देता है। पशु के जो दूध का उत्पादन है वो गिर जाता है। जो पशुओं में मुंह से लार टपकने लगती है तथा
1: जी
0: मुंह हिलाने पर वो चप चप की आवाज़ करने लगते हैं। पशुओं के मुंह के अंदर, गालों में, जीभ में, खुरों के बीच, वो थनों पर भी छाले पड़ जाते हैं और ये छाले जो फटने के बाद एक घाव का रूप ले लेते हैं जिससे पशु को बहुत दर्द होने लगता है।
1: जी
0: जब मुंह में घाव हो जाता है उसमें दर्द होने के कारण पशु खाना पीना छोड़ देता है जिससे वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, और खुरों में दर्द के कारण पशु लंगड़ा चलने लगता है। और यदि गर्भवती मादा में ये बीमारी हो जाए तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। और नवजात जो बच्चे बछड़ियां हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं तो ये कई बार बिना लक्षण दिखाई मर जाते हैं। जहाँ तक हम वयस्क पशु की बात करते हैं तो इस बीमारी में जो मृत्यु दर है वो तो बहुत कम है, लगभग
1: अच्छा
0: 10% के करीब है। लेकिन इस बीमारी से पशुपालकों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो पशु का जो दूध उत्पादन है
1: जी
0: वो बहुत ही कम हो जाता है, और जो पशु बचने के बाद ठीक भी हो जाता है उसका जो शरीर है वो बहुत ही खुरदरा हो जाता है, और कई बार पशु काम करने में असमर्थ हो जाता है, वो हाँफने लगता है, जिसको हाँफना रोग कहा जाता है।
1: यानी कि शारीरिक क्षमता को ये बहुत कम कर देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम इस बीमारी के उपचार की बात करें,
1: जी
0: विषाणु जनित रोग होने के कारण इस रोग का कोई निश्चित उपचार है नहीं, लेकिन जो बीमारी की गंभीरता को देखते हुए लक्षणों को कम करने के लिए पशु का उपचार किया जाता है।
1: जी
0: जो रोगी पशु है उसमें सेकेंडरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक टीके लगाए जाते हैं,
1: जी
0: और मुंह व खुरों के घावों को पोटाश या एक लाल दवा आती है उसके पानी से धोते हैं, तथा जो मुंह है उसमें बोरोग्लिसरीन लगाई जाती है, तथा खुरों में कोई एंटीसेप्टिक लोशन का प्रयोग भी किया जा सकता है।
1: जी
0: यदि हम इस रोग के बचाव की बात करें तो इस रोग से बचाव के लिए पशुओं में पॉलीवेलेंट वैक्सीन या टीकाकरण किया जाता है। ये जो टीकाकरण है ये वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल में लगाया जाता है। जो बीमार पशु है या रोगग्रस्त पशु है
1: जी
0: उसको स्वस्थ पशु से एकदम से अलग कर देना चाहिए।
1: ताकि वो संक्रमण जो है एक
0: उस
1: दूसरे में ना फैले।
0: बिल्कुल जी, जो बीमार पशु है उसकी जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसको भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े में नहीं आना चाहिए। जो रोग से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से पशुओं की खरीद भी नहीं करनी चाहिए,
1: जी
0: और इस रोग को आगे फैलाने से बचाने के लिए जो पशुशाला है उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो ये तो रोग के लक्षण, उपचार और उसकी सावधानियां हो गई।
0: जी
1: यदि किसी के पशु को, मान लीजिए किसी के पशु को ये रोग हो जाता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: तो वो कौन कौन सी सावधानियां बरते जिससे कि रोग का जो प्रकोप है यानी कि इसका जो संक्रमण है वो भी कम हो जाए और जो उसका पशु है वो भी एकदम स्वस्थ हो
0: जी
1: जाए।
0: जी जी जी जब भी पशु को संक्रामक रोग हो जाए तो
1: जी
0: पशुपालक को बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए।
1: जी
0: जैसे सबसे पहले तो जो रोग फैलने की जो सूचना है वो
1: जी
0: निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को जरूर देनी चाहिए
1: अच्छा
0: ताकि वो उचित समय पे उचित कदम उठाए।
1: जी
0: अगर पास के गांव में बीमारी फैली हो तो उस गांव में पशुओं व पशुपालकों का आवागमन भी बंद कर देना चाहिए ताकि बीमारी एक गांव से दूसरे गांव में ना फैल जाए। जो सार्वजनिक तालाब है या चरागाह है उसमें पशुओं को चराना नहीं चाहिए। जो सार्वजनिक तालाब है उसमें पानी पिलाना बंद कर देना चाहिए।
1: जी
0: जो रोग ग्रसित पशु है उसको अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, और जो संक्रामक रोग से की यदि मृत्यु हो जाए तो उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। या तो मृत पशु को जला देना चाहिए या उसको 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा करके उसमें चूना डाल के पशु को ठीक प्रकार से दबा देना चाहिए।
1: जी
0: और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पर बीमार पशु रखा गया हो या मर गया हो उस स्थान को फिनाइल से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और वहाँ पे चूने का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि रोग के कीटाणु मर जाएं। यानी कि जो आपकी पशुशाला है उसको ठीक प्रकार से डिसइन्फेक्ट कर देना चाहिए।
1: जी तो डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है कि पशुओं में पागलपन यानी कि रेबीज का जो रोग है वो कैसे हो जाता है, और यदि ये रोग उनके पशुओं में हो भी जाए

0: तो वो इसका उपचार किस प्रकार से करें?
1: जी देखिए, जो रेबीज़ है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोग है जो सारे स्तनधारी पशुओं में और इवन मनुष्य में भी हो जाता है।
0: जी
1: जो इस रोग को पैदा करने वाले विषाणु हैं वो पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी या नेवले के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
0: जी
1: और उसके जो नर्व होती है उसके द्वारा ये दिमाग में पहुँच कर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा कर देते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक बार पशु अथवा मनुष्य में इस बीमारी के लक्षण पैदा हो जाने के बाद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यदि हम इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो जो रेबीज की बीमारी है मुख्यतः दो रूप में देखी गई है।
0: जी
1: एक तो उग्र रूप में देखी जाती है जिसे फ्यूरियस फॉर्म ऑफ डिजीज भी कहा जाता
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: इसमें पशु में रोग के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। जो दूसरी बीमारी होती है वो शांत रूप में होती है
0: जी
1: या डंप फॉर्म ऑफ डिजीज कहा जाता है। इसमें पशु में रोग के लक्षण बहुत कम या ना के बराबर। कुत्ते में रोग की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है,
0: जी
1: जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाता है,
0: जी
1: पशु जो है वो इधर उधर दौड़ने लगता है तथा रास्ते में जो भी चीज़ आती है वो उसको काट लेता है। जो पशु की अंतिम अवस्था होती है उसमें पशु के गले में पैरालिसिस हो जाता है, पशु पानी पीने में असमर्थ हो जाता है जिससे उसकी आवाज़ भी बदल जाती है तथा शरीर में लड़खड़ाहट आ जाती है और 2-4 दिन के बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। यदि हम गाय व भैंसों में इस रोग के लक्षणों की बात करें, पशु काफ़ी उत्तेजित हो जाता है,
0: जी
1: वो तेज़ी से भागने की कोशिश करता है, पशु ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगता है
0: जी
1: और कई बार तो वो पशु अपना जो सिर है वो किसी पेड़ या दीवार से भी टकराने लगता है। और किसी किसी पशु जो होते हैं उसमें मद या हीट के सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं और 2-4 दिन के बाद शीघ्र ही पशु की मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक इसके उपचार या रोकथाम की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि
0: जी
1: एक बार लक्षण पैदा हो जाने के बाद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
0: यानी कि दिन ब दिन इसका स्तर जो है वो ऊंचा होता जाएगा।
1: बिल्कुल। तो यदि पागल कुत्ता किसी पशु को काट ले तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर इस रोग से बचाव के टीके लगवाने चाहिए
0: जी
1: और जो आपके पालतू कुत्ते हैं उनको भी इस बीमारी से बचाने के लिए नियमित रूप से टीके लगवाने चाहिए।
0: तो ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब रेबीज रोग के बारे में। तो डॉक्टर साहब अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पशुओं में कौन कौन से रोग निरोधक टीके जो है वो दिए जाते हैं।
1: जी, पशुपालकों के घर द्वार पर निःशुल्क रोग निरोधक टीकाकरण किया जाता है।
0: जी
1: तो जो जो टीके लगवाए जाते हैं इनके बारे में मैं कुछ बता दूं। सबसे पहले तो मुंह खुर रोग बीमारी से बचाव के टीके या FMD से बचाव के टीके,
0: जी
1: ये टीके वर्ष में 2 बार 6 महीने के अंतराल में लगाए जाते हैं।
0: अच्छा जी
1: जो पहला टीकाकरण है वो फरवरी मार्च के माह में, दूसरा टीकाकरण सितंबर और अक्टूबर के माह में किया जाता है।
0: जी
1: इसके अलावा HSBQ हेमरेजिक सेप्टिसिमिया ब्लैक वाटर या गलघोंटू और लंगड़ा बुखार का जो रोग निरोधक टीकाकरण है ये बरसात के मौसम से पहले यानी कि मई जून के महीने में वर्ष में एक बार किया जाता है। इसके अलावा जो रेबीज रोग के टीके हैं ये भी पशु में लगाए जाते हैं। और जो हमारी भेड़ बकरियां हैं इसमें भी PPR, एंटरोटॉक्सीमिया और शीप पॉक्स के जो टीके हैं इसका जो टीकाकरण है वो किया जाता है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि यदि पशुओं को समय समय पर हमारे किसान और बागवान भाई बहन रोग निरोधक टीके लगाते रहेंगे तो उन्हें उनका पशु जो है एकदम स्वस्थ रहेगा और दूध भी उचित मात्रा में देगा। तो अब आप हमारे पशुपालकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: जी देखिए, मैं आपके माध्यम से पशुपालक भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, अपने सभी पशुओं में जो मुख्य रोग के रोग निरोधक टीके वो अवश्य लगवाएं। क्योंकि देखिए, दुधारू पशुओं में रोगों के संदर्भ में एक कहावत है कि बचाव इलाज से बेहतर उपाय है,
0: बिल्कुल सही।
1: प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: जी
1: ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है
0: जी जी
1: क्योंकि एक बार जब पशु बीमार हो जाए तो पशुपालक को ना केवल दूध का नुकसान उठाना पड़ता है
0: जी
1: और साथ ही साथ पशुपालक को पशु के इलाज में भी बहुत खर्चा करना पड़ता
0: जी
1: है। तो इस परेशानी से बचने के लिए पशुपालकों को कुछ बातें ख्याल रखनी चाहिए,
0: जी
1: जैसे कि सही समय पर प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध रोग निरोधक टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। जो पशुपालक है उसको प्रमुख रोगों के लक्षणों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वह उचित समय पर उचित कदम उठा सके और साथ ही साथ जो रोगी पशु है उसको तुरंत पशु चिकित्सक से जांच करवाकर सही रोग निदान और इलाज करवाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी और हमारे पशुपालकों के ज्ञान में विस्तार किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाई, अभी आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी सुनी दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उपचार के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी से अवश्य ही लाभ उठाएंगे। हेमराजी कार्यक्रम में फिर से बारी है एक और लोकगीत की, तो आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने समूह स्वरों में सुना ये लोकगीत। तो लोकगीत के बाद हरी जी अब चलते चलते बात कर लेते हैं कल कृषि जगत कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों के बारे में। कल काम की बातों के अंतर्गत विषय रहेगा थ्रेशर का प्रचलन एवं रखरखाव। पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे किसान श्रोताओं का और जानकारीपूर्ण बातचीत भी किसान भाइयों को सुनाई जाएगी, जिसका विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती।
1: जी, तो अब तो देखिए हेमराजी कार्यक्रम का समय भी सम्पन्न होने को है। सभी किसान और बागवान भाई बहनों से अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। 7:45 होने को हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन शिमला को घोषित किया ईंधन संरक्षण क्षेत्र। लोकभवन में कम होगा वाहनों का काफिला। रविवार को सरकारी गाड़ियों पर रहेगी रोक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पेंशनरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर लगाई रोक। सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। भाजपा ने मंडी नगर निगम चुनाव के लिए संकल्प पत्र किया जारी। और बारालाचा लादर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला। पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान पर लोकभवन शिमला को ईंधन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज बताया कि लोकभवन शिमला में प्रत्येक रविवार को पेट्रोल फ्री संडे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत रविवार के दिन कोई भी सरकारी वाहन ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार को निर्धारित सभी सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले के वाहनों को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की समाप्ति और वैश्विक ईंधन की कीमतों के स्थिर आने तक वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने सभी संबंधित कुलपतियों से प्रदेश के विश्वविद्यालय परिसरों में तत्काल प्रभाव से ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप से अपनाने का आह्वान किया है। कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से कार पूलिंग अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, पैदल चलने व साइकिल चलाने को बढ़ावा देने की अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के विकास में पेंशनरों और कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को चार दिन के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों को भी चार दिन में निपटाने के लिए कहा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में ओपीएस के लाभ जारी रखेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। इस बीच अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।
1: अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने हिमाचल प्रदेश के महिला हितों को ध्यान में रखते हुए कमला नेहरू अस्पताल की शिफ्टिंग को लेकर के और जो सरकार ने जो गायनी की ओपीडी आईजीएमसी के लिए शिफ्ट की है उसको ध्यान में रखते हुए और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में हम लोगों ने पीआईएल की थी, जिसमें आज पूरी तरह से माननीय न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जो फैसला है माननीय हाई कोर्ट का, इसका स्वागत करती है और महिलाओं के हित में जो हम लोगों ने पिछले एक महीने से लेकर के जो आंदोलन किए हैं ये आज उसकी जीत है।
0: कर्नाटक के मैसूर में आयोजित विधानमंडल निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के एक समान मॉडल विषय पर आधारित बैठक आज संपन्न हो गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक में हिस्सा लिया और बताया कि बेहद महत्वपूर्ण विषय पर गहन व विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये समिति दो महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय को सौंपेगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि यदि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में संसदीय प्रणाली के कार्य संचालन में एकरूपता आ जाए तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने विधानमंडलों में चलने वाली संसदीय नियमावली पर प्रकाश डाला और इसकी देशभर में एकरूपता की जोरदार पैरवी की। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी रिले किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी की DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।

0: वेतन मिलने के बाद आज अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि निगम की चालक व परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की एक तारीख को कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो दो तारीख से वे अपनी सेवाएं नहीं देंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, सुरेश कश्यप व डॉक्टर राजीव भारद्वाज सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एकजुट होकर बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों को लेकर लोग उत्साहित हैं और मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा इस बार प्रचंड जीत हासिल करेगी।
1: नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बहुत गर्मजोशी के साथ लोग जो है वो उत्साह के साथ राजनीतिक रैलियों में, कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, हम 15 में से 11 सीटें यहाँ पर मंडी में जीते थे और अब की बार ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि पूरे देश भर में एक वातावरण, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साहित है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की जो जन विरोधी हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
0: उधर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने आज मंडी में नगर निगम चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज मंडी नगर निगम के तहत टारना, नीला और अन्य स्थानों पर चुनाव अभियान तेज करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मंडी में जनता पर नगर निगम थोपा और पूर्व जयराम सरकार ने केवल सराज क्षेत्र का विकास ही किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विश्वास जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम सोलन के लिए जो बजट की कोई कमी भी जो है नहीं आने दी जाएगी और जो भविष्य की जो योजनाएं हैं और जो भी वार्ड की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बड़े योग्य उम्मीदवारों को उतारा गया है। और मैं नगर निगम सोलन प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील भी करता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उन्हें जिताएं।
0: मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा नेता व विधायक अनिल शर्मा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य मंडी को आधुनिक, सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विकसित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों में मंडी नगर निगम के विकास की ठोस कार्य योजना है। करीब 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित बारालाचा ला दर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी इकाई के संयुक्त प्रयासों से इस महत्वपूर्ण मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया है। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने बताया कि अगले 3 दिन तक यदि मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य रही तो इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के खुलने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
3: डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौल स्पीति एंड बीआरओ के 70 आरसीसी के लगातार एफर्ट से हमने 12 लच्छाला खोल दिया है जो कि 16,000 से ऊपर की फीट पे है और ये लोगों की सुविधा के लिए हमने खोला है। इससे ले हमसे कनेक्टेड हो चुका है। अभी ट्रायल चल रहा है तो अभी 3 दिन के लिए सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल हम अलाउ करेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स और जैसे ही इसको सेफ पाया जाएगा तो हम हैवी व्हीकल भी इसमें अलाउ कर देंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन शिमला को घोषित किया ईंधन संरक्षण क्षेत्र। लोकभवन में कम होगा वाहनों का काफिला। रविवार को सरकारी गाड़ियों पर रहेगी रोक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा पेंशनरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध।

0: प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, भाजपा ने मंडी नगर निगम चुनाव के लिए संकल्प पत्र किया जारी और बारालाचा लादर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला, पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और एफएम शिमला पर लीजिए पेश है देशगान।

0: युगल स्वरों में देशगान अभी आप सुन रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। नमस्कार दोस्तों,

स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं और आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ। ठंडी हवाओं, देवदार की खुशबू और पहाड़ों की वादियों के बीच आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन FM शिमला। जी हाँ, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रुचि ठाकुर और आज की इस खूबसूरत शाम को और भी हसीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं भूले बिसरे गीतों की ये सुनहरी महफिल। वो गीत जिनमें प्यार था, अपनापन था, दिल को छू लेने वाला एहसास था, तो तैयार हो जाइए यादों की उस प्यारी सी एक सफ़र पर चलने के लिए जहां हर गीत एक कहानी कहती है। जी हाँ, आगाज़ करेंगे इस गीत के साथ। बरसात फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। क्या दौर था वो जब गीतों में सादगी थी, संगीत में मिठास और हर शब्द दिल में उतर जाता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आकाशवाणी एफएम शिमला से। तो थोड़ा मुस्कुराइए क्योंकि अगला गीत आपके दिल को ज़रूर छू जाएगा। इसे लिया है हमने फिल्म पतंगा से, इसे गाया है शमशाद बेगम और चितलकर ने।
1: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम। अब पेश है एक ऐसा गीत फिल्म अलबेला से, जिसे सुनकर मोहब्बत और भी खूबसूरत लगने लगती है। जी हाँ, इसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामाचंद्रा का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप और आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम का। जी हाँ, ये गीत और इनके इन गीतों की मिठास जो है वो आज भी हर पीढ़ी को पसंद आती है। जी हाँ, ये गीत सिर्फ गीत नहीं बल्कि हमारे इमोशंस हैं, हमारी यादें हैं जो हमें जो है वो एक दूसरे के करीब लाती है। जी हाँ, अब आपको सुनवाएंगे नया दौर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में, साहिर के बोल और ओपी नैयर का संगीत।

श्री 420 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। जी हाँ, इसे गाया मन्नाडे और लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। अब आपको सुनवाएंगे 9/2/11 फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, मजरूह के बोल और एसडी वर्मन का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज भूले बिसरे गीतों के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं दोस्तों, और एफएम शिमला पर ये समय है फिल्म संगीत का। जी हाँ, इसका आगाज़ करेंगे दामिनी फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आपको सुनवाएंगे फूल और कांटे फिल्म का ये गीत। इसे गाया है अलका याग्निक और कुमार शानू ने, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। 8:45 होने को हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज़ @9 के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए

0: खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव

0: सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा

0: गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम। जी हाँ, आज की फिल्म है सिलसिला। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन ने अमित मल्होत्रा, शशि कपूर ने शेखर मल्होत्रा, जया बच्चन ने शोभा, रेखा ने चांदनी और संजीव कुमार ने डॉक्टर वी के आनंद का किरदार निभाया। सुधा चोपड़ा इस फिल्म में शोभा की माँ का किरदार निभा रही हैं और देवेंद्र वर्मा कुलभूषण खरबंदा, जी हाँ, इंस्पेक्टर कुलभूषण का किरदार निभाया है कुलभूषण खरबंदा ने इस फिल्म में। आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। आइए आपको सुनवाते हैं एक और गीत फिल्म सिलसिला से।

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम, और आज की फिल्म है सिलसिला। सिलसिला फिल्म प्यार, कर्तव्य, समझौते और विवाह के ताने बाने पर बुनी एक बेहद संवेदनशील, भावनात्मक और रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। जी हाँ, दिल्ली के रहने वाला एक उभरता कवि होता है अमित मल्होत्रा, यानी अमिताभ बच्चन, और रेखा जो है वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती है इस फिल्म में। चंद्रशेखर मल्होत्रा का किरदार निभाया है शशि कपूर ने। जी हाँ, अमित का बड़ा भाई होता है शशि कपूर, और इनकी मंगेतर होती है इस फिल्म में जया बच्चन यानी शोभा। एक विमान दुर्घटना में जो है वो अमित की, माफ़ कीजिएगा, शेखर मल्होत्रा की मौत हो जाती है, और फिर आगे डॉक्टर जो है जिसका किरदार डॉक्टर आनंद, जिनका किरदार संजीव कुमार ने निभाया है, वो चांदनी को जो है, उनसे चांदनी की शादी हो जाती है। इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी, और फिल्म का जो क्लाइमेक्स होता है वो इनके जो सुखी जीवन में इनकी वापसी होती है, इनकी शादियों में इनकी वापसी हो जाती है बहुत कुछ होने के बाद, और वो इन शादियों में बने रहते हैं और उसमें खुश रहने का फैसला करते हैं। इसके इर्द गिर्द घूमती है फिल्म सिलसिला की कहानी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर यह समय है दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। आगाज करेंगे पुकार फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है उदित नारायण और हेमा सरदेसाई ने। मजरू सुल्तान

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। अब आपको सुनवाएंगे क्या कहना, इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन ने।

चल मेरे भाई, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। जी हां, इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हम फिल्म संगीत। दिल चाहता है इस फिल्म का ये गीत शंकर महादेवन की आवाज़ में अब आपको सुनवाएंगे। जावेद अख्तर के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: are you?
1: कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में, समीर के बोल, संदेश शांडिल्य का संगीत इस फिल्म में। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ है आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
3: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
2: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।
1: इसी के साथ आज दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में बस इतना ही।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 10 बज चुके हैं और आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। इस खूबसूरत महफिल में जहां शब्दों में एहसास है, सुरों में मोहब्बत है और हर बात दिल की गहराइयों से निकलकर सीधे रूह तक पहुंचती है। जी हाँ, आकाशवाणी एफएम शिमला पर यह समय है गजलों पर आधारित कार्यक्रम का। गजलें जो कभी दर्द बनकर आंखों में उतरती है तो कभी मोहब्बत बनकर होठों पर मुस्कुरा उठती हैं। जी हाँ, आगाज करेंगे जगजीत सिंह की गाय इस गजल के साथ कार्यक्रम का।

वाह क्या बात है, कितनी खूबसूरती से पेश किया गया है इस गज़ल को। हर मिसरा दिल को छू गया और हर सुर में एक अलग ही कशिश थी। गज़लें वही होती हैं जो सुनने वाले को कुछ पल के लिए उसकी अपनी दुनिया में ले जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ होगा आपको भी ज़रूर। 103.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, और अब आपको सुनवाएंगे गुलाम अली की गाई ये गज़ल

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं। आप सुन रहे हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम दिल में छुपे एहसासों को। दिल में छुपे एहसासों को आवाज बना देती है गजल, हर दर्द को जीने का अंदाज सिखा देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और शानदार गजल जो मोहब्बत, यादों, जिंदगी के रंगों को अपने अंदाज में बयां करती है। जी हाँ, इस गज़ल को गाया है पंकज उदास ने और इसके शायर हैं मीर ताकी मीर।

दोस्तों, गज़लें सुनने का अपना ही एक अलग मज़ा है, क्योंकि यहाँ वाह वाह दिल से निकलती है और मुकम्मल खामोशी भी तारीफ़ बन जाती है। इसी के साथ आज गज़लों पर आधारित कार्यक्रम में बस इतना ही।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी एफएम शिमला पर यह समय है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का, एक ऐसी महफिल जहां सुरों की खुशबू है, यादों का कारवां है और दिल को छू लेने वाले हैं सदाबहार नगमे। जी हाँ, वो गीत जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि हमारी यादों का हिस्सा है, कभी बचपन की गलियों में ले जाते हैं तो कभी किसी पुराने प्यार की याद दिला देते हैं, किसी ने क्या खूब खाया है। कुछ नगमे कभी पुराने नहीं होते, वो हर दौर में दिलों के करीब होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सुनहरे सफ़र को इस गीत के साथ। इसे लिया है फिल्म कश्मीर की कली से, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस एच बिहारी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

शब्द भी दिल से निकलते हैं और धुन भी जो है वो सीधे दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, पुराने गीतों का जादू कभी कम नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये और भी करीब होने लगते हैं। जी हाँ, अब आपको सुनवाएंगे कन्यादान फिल्म का ये गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। रात, चांदनी और पुरानी गीत, इनका साथ हमेशा दिल को सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे हर धुन कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। तो आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं आरजू फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। और इस गीत को सुनते ही मानो हम सब यादों की दुनिया में खो गए।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम। अब आपको सुनवाएंगे अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। साथ हैं इनके श्रद्धा, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

इसी गीत के साथ आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम में बस इतना ही। 11 बजने को हैं, अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी व अंग्रेजी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्ति

0: की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad-Sarkhej-Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures.